0: प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो के जगमगाते प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु की अगली कड़ी। आज की गायिका की तारीफ करना मुझे बहुत मुश्किल सा लग रहा है। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मासूमियत है और उनके गले में जैसे माँ सरस्वती का निवास है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी झिलमिलाती शख्सियत से जो अपनी चमक भर से हमारे दिलों में खुशियां भर देती है। ऋतु, हमारे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि वो अपना कीमती समय दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं।
0: जी, मैं तो कहूंगी कि ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आप जैसी कलाकार हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है और हमें आपके गाए हुए बहुत से बड़े ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। तो ऋतु, आप का मायका यूपी से है और इस वक्त आप गुड़गांव में रहती हैं। तो दोनों शहरों में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। एक बड़ा शांत सा है, एक कॉरपोरेट हब है। दोनों की चाल ढाल, दोनों के खान पान, बहुत फर्क रहता है दोनों में। तो आप किस शहर के ज्यादा करीब अपने आप को मानती हैं और क्यों? और इसके साथ ही हमारे सुनने वालों को कुछ अपने बारे में भी बताइए।
1: जी बिल्कुल, जैसा कि मेरी पैदाइश यूपी में हुई है
0: जी,
1: और तो एक अलग ही लगाव होता है जहाँ भी हम पैदा होते हैं उससे। तो
0: बेशक,
1: तो मैं कहूँगी कि अभी भी यूपी में बहुत अपनापन है। वहाँ लोग जब भी मिलते हैं तो निक लगाव देखने को मिलता है, बहुत मिठास है वहाँ की बोली में। और अभी भी वहाँ का जीवन बहुत सरल है। और गुड़गांव मैं शादी के बाद जैसे यहाँ पर आ गई हूँ तो ये बहुत ही मॉडर्न एडवांस शहर है। यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है।
0: जी जी।
1: और यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत फास्ट लाइफ है,
0: बहुत फास्ट
1: लेकिन
0: है।
1: जी, लेकिन फिर भी वो टाइम निकालते हैं, मिलते जुलते हैं।
0: जी, जी।
1: और जगह जगह
0: अपनी तरफ से कोशिश तो करना ही पड़ती है ना हमेशा।
1: और जैसे ना यहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट के, जगह जगह के लोग आते हैं
0: जी,
1: और उनकी अलग अलग सपने होते हैं। तो ये शहर उनको मौका देता है उन सपनों को पूरा करने का।
0: अरे वाह, बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब
1: जी।
0: तो अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ।
1: जी, मेरा परिवार एक, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। काफी बड़ा परिवार, बाबा दादी ताऊ चाचा मम्मी पापा, मतलब बहुत बड़े परिवार।
0: अच्छा, तो एक ही घर में रहते थे सारे?
1: जी जी, बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत सारे कमरे, सबके अलग अलग कमरे। तो बहुत ही अच्छा बचपन मेरा बीता, मैं कहूँगी। और जो मेरे संस्कार हैं वो वहीं से मुझे मिले हैं
0: जी,
1: कि सरल रहो, जमीन से जुड़े रहो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों से प्यार करो, ये सब मुझे वहीं से मिला है
0: जी। एक्चुअली जो हमारे पहले वाली जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही है, वो लोग काफी ज्वाइंट फैमिलीज तब होती थी और ज्वाइंट फैमिलीज के बहुत से फायदे भी रहे हैं हमेशा ही, है ना। अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होता। आजकल की जिंदगी में बहुत अकेलापन है, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ ही रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी, जैसे कि आपने कहा कि सपने पूरे करने के लिए हर कोई गुड़गांव की तरफ रुख करता है या भारत के और मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरफ रुख करता है, लेकिन अक्सर वो क्योंकि अपने परिवार को एकदम से ला भी नहीं पाते हैं तो अकेलापन तो रहता ही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा मतलब मैं देखती हूँ कि स्ट्रेस ही भरा हुई है लाइफ में आजकल की जो भी लाइफ है
0: जी।
1: बट हम जब छोटे थे तो ये सब तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या है,
0: अरे
1: कभी अपने पेरेंट्स में भी नहीं देखा
0: जी, बिल्कुल,
1: कि वो कभी परेशान है, कुछ परेशानी है, सब आपस में मिलके बांट लेते थे, सारे दुख बांट लेते थे। तो बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगी मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है।
0: जी जी, नहीं वो आपके चेहरे से भी झलकता है ऋतु में। तो हालांकि आप एक इंट्रोवर्ट हैं बट फिर भी आपके जो चेहरे पर जो खिलखिलाती सी हंसती सी मुस्कुराहट रहती है वो बहुत ही आकर्षक है। तो आपके चेहरे से पता चलता है कि आपका जो बचपन रहा है बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं। क्या सुनवा रही हैं आप?
1: चार ही लाइन गा दूं तो चलेगा?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम तो आपको लाइव सुनना चाहते हैं पर वक्त का तकाजा है, हम सारा प्रोग्राम लाइव नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज जरूर सुनाइए
1: जी। बिल्कुल।

0: वाह ऋतु, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया। ये गीत बहुत आसान गीत नहीं है, इसमें जो हरकतें हैं, जो मुर्कियां हैं, वो लेनी बहुत मुश्किल है। तो इससे मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी इस गीत को सुनने के बाद कि क्या आपने संगीत में कोई तालीम ली है?
1: जैसा कि मैंने बताया, मैं जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ एक कल्चर था कि जितनी भी बेटियां हैं ना वो म्यूजिक सीखें।
0: अरे वाह।
1: पहले मेरी बुआ सीखती थी, तो जब वो बड़ी हुई शादी हो गई, फिर हम जैसे मैं मेरी जनरेशन में 5 बहनें हैं,
0: अच्छा,
1: सारी कजिन्स और रियल सिस्टर मिला के।
0: अच्छा।
1: तो वही गुरुजी आते थे हमें सिखाने।
0: अच्छा।
1: तो 2-2.5 साल की उम्र से हमें बैठा दिया जाता था हारमोनियम, तबले और तानपुरे के साथ कि ये सीखो गुरुजी के साथ।
0: क्या बात।
1: तो काफी छोटी उम्र से हमने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: गुरुजी के साथ अलंकार लिया, फिर वो राग तान अलाप सब में सिखाते गए और हम सीखते गए। तो मैंने सीखा हुआ है, बट यही है कि जब तक छोटे क्लास में थे तभी तक वो हो पाया। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते गए, वैसे वैसे फिर वो कम होता गया और धीरे धीरे एकदम बंद भी हो गया। लेकिन वो जो सीखा है बचपन का, वो आज भी काम आता है।
0: जी,
1: आज भी वही। जी
0: जी वो आपके सारे गीतों में झलकता है ऋतु। आपके साथ जब मैं भी गाती हूँ या बाकियों को सुनती हूँ आपके साथ, तो फर्स्ट पता चलता है कि आपको संगीत की समझ है, कहाँ पर क्या करना है। बड़े प्यार से, बड़ी एफर्टलेसली वो आप ले जाती हैं वो हरकत, तो वाकई हाँ जी जाहिर होता है। तो संगीत के साथ साथ क्या आपने कोई और भी रुचि रखी है बचपन में?
1: ऐसे मुझे डांस भी बहुत पसंद है, लेकिन कभी सीखा नहीं।
0: अच्छा।
1: और बहुत शाय हूँ, तो ऐसे सबके सामने करती भी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे डांस का भी शौक है और स्टेप में जल्दी सीख भी जाती हूँ देखकर।
0: अच्छा,
1: तो वो
0: अच्छा।
1: भी एक शौक है।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई।
1: और मैं प्राणी हीलर भी हूँ, प्राणी हीलिंग का कोर्स किया है।
0: अरे वाह वाह।
1: तो ये एक डिस्टेंस थेरेपी होती है, इसमें आप दूर बैठे किसी की भी फोटो, बस आपको पता होनी चाहिए
0: जी,
1: आप स्कैन कर सकते हो, हील कर सकते हो,
0: जिसको रेकी भी कहते हैं।
1: नहीं, रेकी अलग है, उसमें आप मतलब छू कर करते हो।
0: अच्छा।
1: दूर से नहीं करते हो।
0: अच्छा।
1: बट इसमें अगर कोई यूएस में भी है और उसकी फोटो मेरे पास है,
0: हाँ,
1: तो मैं उसको भी स्कैन कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, हीलिंग दे सकती हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो वो स्कैनिंग आज भी मेरे काम आती है, हीलिंग तो उतनी काम नहीं आती, मैं उतनी हीलिंग नहीं दे पाती, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। बट मैं किसी को भी स्कैन करके बता सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस
0: अच्छा।
1: तरह से। तो मेरी फ्रेंड्स आती हैं कि देख मुझे थायराइड हो रहा है क्या, देख मुझे शुगर
0: अच्छा,
1: आ रही है क्या।
0: अच्छा।
1: तो मैं वो स्कैन करके देख सकती हूँ, उनको छूने की भी जरूरत नहीं है, वो फोन करके बोलती जरा मेरी स्कैनिंग कर दे।
0: मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर ऋतु कि हमारे श्रोता आज के प्रोग्राम के बाद ना सिर्फ आपकी गायकी की तारीफ करने वाले हैं, बल्कि हमें बहुत सारे फोन आने वाले हैं कि जी ऋतु जी को हमारी पिक्चर भेज दीजिए, हम भी स्कैन करवा के पूछना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं हमें। तो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी की मल्लिका हैं आप। इसी के साथ आपका दूसरा गीत लेते हैं।

0: ऋतु, वैसे आप गृहिणी हैं, बड़ी ही कुशल गृहिणी हैं और आपको मेहमान नवाजी का भी बहुत शौक है, आप कुकिंग में भी बहुत ज्यादा आप शौक रखती हैं। मैंने तो आपके हाथ का बना हुआ खाना बड़े ही स्वाद के साथ चखा भी हुआ है। तो कहते हैं कि जो गृहिणी होती है वो परिवार की रीढ़ होती है, उसकी मेहनत, समर्पण, त्याग, यही घर का हर कोना खुशियों से भर देता है। तो आप अपने परिवार की रीढ़ है बेशक, तो आप किस इंसान को अपनी रीढ़ मानती हैं? किस इंसान को आप किस इंसान के बारे में आप ये कह सकती हैं कि वो आपका मनोबल बांधे रहता है, हमेशा सपोर्ट करता है? किसको श्रेय देती हैं अपनी ये सारी पॉजिटिविटी का, जहां पर आप जिंदगी में जिस मुकाम पर आई हैं वहां तक आने का?
1: जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर, गुरुजी, माता पिता को ही धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे सबसे पहले जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो उनका ही हुआ है।
0: जी जी।
1: और उसके बाद मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड अनुराग का बहुत सपोर्ट है मुझे, हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं।
0: बेशक,
1: बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और हमेशा इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं कहूंगी कि वो ही मेरी रीढ़ है, मुझे आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। और मैं चाहूंगी कि जो आपका अगला गीत है वो आप अनुराग जी को ही डेडिकेट करके हमें सुनवा दीजिए।
1: जी बिल्कुल।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत रहा ऋतु, मजा आ गया सुनकर। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ दो शब्द कह के जाइए।
1: सबसे पहले आपको फिर से धन्यवाद दूंगी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी
1: बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही कहूंगी कि आज की जो इस भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें सभी भाग रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को मत भूलिए, अपने शौक को जिंदा रखिए, उसको भी समय दीजिए, क्योंकि यही शौक, यही पैशन, यही जुनून हम एक इंसान बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: अदरवाइज हम सब एक मशीन ही बन के रह जाएंगे। तो अपने शौक को जिंदा रखिए।
0: जी, जैसे कि आपने इतने संघर्षों के बाद भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने आप को संगीत से जोड़े रखा है,
1: तो
0: जी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को महत्व दें। हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को तो महत्व देते ही हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपनी अपनी खुशियों का, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले जो कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखना है, उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, और खुद से सबसे पहले प्यार करना चाहिए।
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की सितारा ऋतु वर्मा गुड़गांव से। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता, और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। तब तक डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: नमस्कार जी, मेरी तरफ से माय नेम इज प्रीति गुप्ता, आई एम फ्रॉम पटियाला। तो सबसे पहले मैं जगदीश जी के लिए दो वर्ड्स बोल के स्टार्ट करूंगी जो मेरा पार्ट है। कहते हैं कि खुद मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेवारी उसी को देता है जो उसके काबिल होता है। आपने आज हमें ये ऑडिटोरियम, ये समा, ये लाइट सिस्टम, ये साउंड

सिस्टम, एक एक इंच का ख्याल रखा है आपने। मैं यहाँ पे भी देख रही थी सेल्फी पॉइंट पे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब हम वहां जाके खड़े हो रहे हैं तो हमारी आर्म्स के अकॉर्डिंग इसकी हाइट है, तो ये भी सोचा होगा। इतनी बारीकी में मैंने काम करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजर को, मैं स्टेज पे ही कह रही हूँ, पटियाला में भी बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने नहीं देखा। ही टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट थिंग। थैंक्स टू यू, आपका यही प्यार और सम्मान है हर सिंगर के लिए, हर श्रोता के लिए, कि हम खींचे चले आते हैं आपके पास। तो आगे का प्रोग्राम अब हम शुरू करते हैं। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी रजिंदर धीमान जी को, एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ, ऐसे ना मुझे तुम देखो।

0: थैंक यू।
1: आप दोनों का ही जलवा तौबा है, रफी साहब को भी खूब निभाया खेड़ा साहब ने और बलजीत जी ने किशोर साहब को खूब निभाया, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। अब मैं स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर नीरू सरगम जी को। अगर किसी ने डॉक्टरेट की है इतनी मेहनत तो डॉक्टर बोलना बनता है, और हमने इनके पास पहले भी सुन ली, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी।

0: किया कि आपने इस फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है. एक एक नोट. तो हम चलो सारे तो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते संगीत में, लेकिन उस तैयारी के साथ आना तो बनता है जितनी हम कर सकें.
1: थैंक यू मैम.
0: अगर मैं इनके लिए ना बोलूँ ना तो ना इंसाफी होगी. आईने शीशे, आईने क्या देंगे तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, कभी मेरी आंखों से देखो बहुत लाजवाब हो तुम.
1: थैंक यू मैम.
0: वंस अगेन आई एम सेइंग गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू मैम. थैंक यू.
0: वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर हियर एंड वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू यू.
1: थैंक यू.

बहुत ही प्यारा गीत, मनदीप जी की आवाज बहुत ही अच्छी। और कीर्ति बेटा, वेरी गुड। कीर्ति के मम्मी पापा को स्पेशल कॉन्ग्रेट्स, जिन्होंने अपने बच्चों को ये विंग्स दिए, दोनों बच्चों को, कि वो बहुत आगे बढ़े। उनके लिए जोरदार तालियां। राधिका जी, बहुत ही प्यारे गीत के साथ जा रहे जाओ हर जाएगी।

वाह, क्या परफॉर्मेंस राधिका जी, जितनी खूबसूरत आप खुद हैं, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज। आपके लिए कुछ कहूं, इनकी चेहरे की चमक के सामने, इनकी चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमान में चांद तो पूरा था मगर आधा लगा। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा गाया आपने। परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की जो एक टेंडेंसी है वो किसी में नहीं, तो मैं बुला रही हूं जगदीश जी को। हमेशा एक सरप्राइज लेके आते हैं स्टेज पे, हमें नहीं पता होता क्या करेंगे, बट जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। इनके बाद नीरज जी आप तैयार नहीं हैं।

0: आए नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल, आए नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल। सच तो ये है,
1: अरे पगली सच तो ये है,
0: हाँ सच तो ये है पगली, हम ना पिछड़े।

0: तू मैं के मत जइयो, तू मैं के मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, मैं के मत जइयो। थैंक यू।
1: बहुत ही अच्छा गाया गीत के माध्यम से। मैम को बार बार कहें माइक के बज जाना। बट ऑन द सीरियस नोट, अगर हम सफर बहुत अच्छा हो तो जिंदगी बहुत हसीन है, और मैम की पर्सनैलिटी देख के ही पता चलता है कि आपके हम सफर बहुत अच्छे हैं सर। आप माइक के मत जाना। अब मैं स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ नीरज जी को। मुझे झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, आपको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। मैं इसलिए भी हरदम खुश रहती हूँ क्योंकि आपको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। तो अगर हम सफर का साथ हो और बहुत सपोर्ट हो तो लाइफ में हम बहुत आगे जाते हैं। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू। अब हमारा गाना भी अखियों पे ही है, और हमारे बाद हेमलता जी आप तैयार रहें।

0: बहुत ही अच्छा गाया हेमलता मैम, मैं तो फ्लैशबैक में चली गई थी क्योंकि ये एक ऐसी मूवी का सॉन्ग है जो शायद ही इस हॉल में भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी, रादर दो दो चार चार दस दस बार देखी होगी।
1: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं,

0: थैंक यू।
1: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा गीत और दोनों ही सिंगर्स ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया। दिव्यांशी के बारे में मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि शी इज ब्लेस्ड। बहुत ही मीठी आवाज, और जब भी किसी गीत में किसी का भी साथ दे तो चार चांद लग जाते हैं।

0: गोविंदगढ़ सरहिंद पटियाला अंबाला सबका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में लुधियाना का भी। ये भाव मैं बहुत गुस्से होंगे कभी कभी, पर बहुत चंगा लगता है अपने ही गुस्से होंगे।
1: सानू लग रहा है सानू स्टेज बहुत पसंद आ गई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, सिंगिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस, वाओ।

0: थैंक यू सो मच, थैंक यू रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़े बड़े जेस्टर्स होते हैं और ये जो अपने गॉगल्स लगा के परफॉर्म करते हैं उससे ये अपने परफॉर्मेंस की छाप सभी पर छोड़ जाते हैं और इनकी जो दमदार पावर पैक्ड वॉइस है वो सभी के दिलों को छू लेती है। तो आप सबके सामने बलदेव कृष्ण जी।
2: थैंक यू।

0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आसमान और शान से जीने के सके है ना।

0: Thank you. Thank you so much.
1: Just wow. Speechless. I'm short of words. क्या गाया आपने?
2: मैं थोड़े सामने रफी साहब का गाया हुआ एक गीत जो कि फिल्म अपना बना के देखो तो है। इस दे लिरिक्स ने असद भोपाली साहब दे और म्यूजिक देता है रवि साहब। प्लीज़।

0: रसदीप जी ने अपने नाम के अकॉर्डिंग गाने में रस भरा और कीर्ति बेटा के लिए हम कहेंगे इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले।
1: जोरदार तालियां एक बार इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, इन सबका योगदान ज्यादा है, मेरा कुछ नहीं है। थैंक यू।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं संगीता माल्या के गाए कुछ सुरीले नगमे।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आइए सुनते हैं संगीता माल्या के गाए कुछ सुरील नगमे। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार और आज के हमारे सिंगर मेहमान अहमदाबाद गुजरात से नीरज। वेलकम है नीरज, और नीरज लेके आए हैं अपने गीतों में प्यार की कहानी। प्रोग्राम का नाम गीत कहानी, और कैसे कह रहे हैं नीरज अपनी जुबानी, आइए सुनते हैं। रात की बात है, क्या हुआ सुन लीजिए इस शाम को।

बिल्कुल सावन रुत का सवेरा, दुनिया नीरज की गुलजार हुई, मतलब हो गया जिसे आप प्यार कहते हैं। और प्यार तो दीवाना होता ही है, आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं।

सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। और पैमाने में हम आज माप रहे हैं। नीरज की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान के इस मंच पर, और आ ही जाता है दिल जिस पर आना होता है। और नीरज का दिल गीत कहानी पे आ गया है, और ये गीतों की कहानी लेके अहमदाबाद गुजरात से हमारे संग है, हमारे साथ हैं। देखते हैं नीले नीले अंबर पर चांद क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे बातचीत नीला बेन के साथ। बड़ोदरा गुजरात से हमारे इस मंच पर नीला बेन रही। नीला जी को बहुत धन्यवाद और आभार।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुरीले सिंकर, और आज हमारे संग हमारे साथ हैं शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित। वेलकम है मिलिंद जी, और बहुत दिनों बाद वो गीत चुन के लाए हैं मिलिंद जी, जिसमें पल पल चुने जाते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम में जो गीत होंगे वो सारे के सारे एक विनम्र गीतों भरी स्वर श्रद्धांजलि होगी अदाकार एक्टर सदाबहार हीरो दिवंगत धर्मेंद्र जी को। आइए पल पल की गिनती गिनते हम भी पल पल बढ़ते हैं, और पहला गीत सुनते हैं हमारे संग हमारे साथ मिलिंद पंडिता यूएसए से, आपकी आवाज आपकी पहचान।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म ब्लैकमेल में धर्मेंद्र जी और राखी पर फिल्माया गया था और पल पल बन के दिन सप्ताह साल महीने न जाने क्या क्या बनता है और वही पल ऐसा आता है कि हमें और हमसे किसी अपने की दूरी बना लेता है। सच में ये गीत बहुत लाजवाब गीत था और उस वक्त के युवाओं के लिए उनके दिल में हूबहू अपनी रूह के साथ उतर जाता था। हर प्रेमी के दिल में ये गीत बसता रहता था चाहे उसकी आवाज सामने वाले को सुनाई ना दे। और इस गीत को उसी तरह से अभिनेता धर्मेंद्र जी को याद करते हुए हमारे आज के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित यूएसए से लेके आए हैं। आइए सुनते हैं इस हसीन शाम का अगला खूबसूरत गीत।

वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। सच में धर्म जी के फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद में सच में ऐसा लगने लगा कि रोशन हो गया है फिल्म जगत। और दुल्हन एक रात की का ये गीत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रफी साहब ने गाया और इसका संगीत दिया मदन मोहन साहब ने, और इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान साहब ने। और इस गीत को हमारे लिए आज इस मंच पर प्रस्तुत किया शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित ने। और अब जो दिल की सुनते हैं वही गीत भी सुनते हैं। आइए हम भी इसी गीत का लुफ्त उठाते हैं।

मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अकेला रहने दो। और ये एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र यानी धर्म जी के साथ फिल्म अनुपमा में हेमंत दा ने गाया था। और कैफी आजमी का ये गीत बहुत ही सुरीला, और इसमें खास बात ये कि इसका संगीत भी हेमंत दा ने ही दिया था। और हमारे लिए इस मंच पर धर्म जी को याद करते हुए शिकागो यूएसए से जयपुर रेडियो के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित इस गीत को लेके आए। आइए सुनते हैं, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। और आज हम ख्याल कर रहे हैं धर्म जी का, आवाज फिर वही मिलिंद पंडिता शिकागो यूएसए से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आइए सुनिए सुरीला गीत।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में, और इसमें धर्म जी का साथ दिया था अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने। इस खूबसूरत गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, और हमारे लिए इस गीत को गाया मिलिंद पंडिता ने। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं सुरीले सिंगर प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आज के सुरीले सिंगर शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे वो साज न दो,

किस कदर जल्दी किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा ये ना सोचा तुमने। मुकेश जी की आवाज इस गीत में फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे के लिए संगीत रहा था। इसमें कल्याण जी आनंद जी का और शमीम जयपुरी का संगीत इस गीत में। और सच में रात को इस गीत को सुन के हमें धर्म जी की याद बरबस आ ही जाती है, यदि आपने उस फिल्म को देखा हो, सोचा हो, सुना हो। बहुत खूबसूरत गीत हमारे लिए लेके आए मिलिंद पंडित। सुरीले संगीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। और एक ऐसा गीत जिसके बगैर धर्म जी को ये प्रोग्राम पूरी तरह समर्पित नहीं हो

ये बताने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म में धर्म जी के साथ कौन ड्रीम गर्ल थी, और वो ड्रीम गर्ल आज भी है, धर्म जी की ड्रीम गर्ल। बहुत ही खूबसूरत गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत रहा इस फिल्म में, और सच में ये अमर गीतों में से एक गीत हो गया। धर्म जी की याद जब भी हमें आएगी, ये गीत हमें सच में उनके होने का एहसास दिलाएगा। मिलिंद पंडिता लेके आए हैं धर्म जी के अभिनीत गीतों को इस मंच पर सुरीले सिंगर प्रोग्राम में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आइए सुनते हैं। एक और सदाबहार अमर गीत जिसे जब भी आप सुनेंगे

0: यार ए हुस्न वाले, जीने दे या मार डाले। आज मौसम बहुत बेईमान है। फिल्म लोफर का ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। रफी साहब ने इसको आवाज दी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था और ऑन स्क्रीन धर्म जी के साथ मुमताज। जी हां, मुमताज ने इस गीत को धर्म जी के साथ गाया था। खूबसूरत गीतों का और धर्म जी की यादों का गीतों के साथ ये सिलसिला यहीं संपन्न होता है। लेकिन हम मिलिंद जी के लिए कहना चाहेंगे, चाहे वो किशोरदा की आवाज हो, चाहे मुकेश साहब की या फिर हेमंत दा की, सभी आवाजों को आपने अपनी एक आवाज में सभी गीतों को पिरोया और इस मंच तक संजो के लाए। उसके लिए शिकागो से हमारे लिए मिलिंद पंडित को हम कहेंगे शुक्रिया, करम मेहरबानी। एक बार फिर जाते हुए इस वर्ष की कसक में ये जख्म हमारे लिए हमेशा आवाज के साथ, गीतों के साथ बना रहेगा। मिलिंद जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपने सुना प्रोग्राम सुरीले सिंगर। और अब हमें अनुमति दें, नमस्कार।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते और जयपुर।
3: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज, अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
2: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
2: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुल थ्रू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम?
2: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
2: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
2: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
2: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
2: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
3: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
0: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
0: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: जीवन की अविरल धारा में बहुत से लम्हों को जीते हैं हम, जिनमें से कुछ खास लम्हे हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही पलों को जीवंत करने की कोशिश, बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए मेरे साथ हैं ओपी शर्मा। भगवत गीता में कहा गया है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। तो आज बातें योग की, उस खास योगिनी से जो योग को जीती हैं। दिव्य धारा सरस्वती आचार्य योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा, योगा मेडिटेशन कोच, स्पिरिचुअल कोच, प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट एंड को डायरेक्टर ऑफ योगा स्थली योगा सोसाइटी। नमस्कार डॉक्टर हेमलता शर्मा।
1: नमस्कार सुषमा जी।
0: आपसे मिलते ही आपकी प्यारी सी मुस्कान हमें पॉजिटिव वाइब्स भर देती है। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या राज है इसका, इस मुस्कान का।
1: देखिए सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग कॉम्प्लीमेंट। और मैं ये मुस्कुराहट अपने आप ही आती है जब आप हर पल को प्रेजेंट में जीते, पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर केवल प्रेजेंट में आप जी।

0: का आनंद लेते हैं वर्तमान में, तो अपने आप ही आपको 100% आप अपना क्वालिटी देते हैं, तो आप आनंद ही आनंद, हर पल आनंद, और वास्तव में आनंद समाया है, बस देखने की जरूरत है कि हर पल आनंद कहाँ है।
1: महसूस करने की जरूरत है, बिल्कुल। और आपको देखकर, आपके साथ रहकर हम ये महसूस कर पाते हैं। तो कब आपकी जीवन यात्रा में योग शामिल हुआ?
0: देखिए, योग शायद उस समय हमें ये नहीं पता था कि योग है। वैसे बचपन से ही हम बड़े आध्यात्मिक वातावरण के अंदर पले बड़े हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ से हमारा एजुकेशन हुआ है, तो वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ रहना, यज्ञ करना, ये हमारी उसमें था, एजुकेशन में था। और उसके बाद में हम परिवार का माहौल ऐसा था, और जैसे ही फिर हमारा विवाह हुआ, शादी हुई, उसके बाद में हाँ, दो बच्चे होने के बाद में हमारा जो जर्नी है, उससे पहले हम आईटी अचौड़ी थे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। और
1: जी
0: फिर धीरे जो 2010 के अंदर हमें मौका मिला योग कक्षाओं को ज्वाइन करने का, और हमने योग कक्षा को जब ज्वाइन करा तो हमें लगा कि ये चीज है जो वास्तव में आप अपने आप के लिए जीते हो, और एक बहुत ही लीगल कार्य आप करते हो, तो हमें अच्छा लगा अपने आप में। उस वहां से एक मोटिवेशन मिला हमें कि हेमलता, आप इसके लिए बने हो, अब
1: क्या
0: योग
1: बात
0: के लिए
1: है,
0: बने। तो बस वहीं से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट करा, और फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखा।
1: एक गृहिणी, एक माँ के रूप में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने योगाचार्य की भूमिका को ग्रहण किया। बड़ा मुश्किल रहा होगा ये काम, तो कैसे ये भूमिका आपने अपनाई, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया?
0: देखिए, जहां तक आपने कहा कि मुश्किल रहा, तो मुश्किल तो होता है। भारतीय अपनी गृहिणी के लिए बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को निभाना, फिर खुद के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होता है। तो हाँ, ठीक है, रास्ते हमने पूरा जुनून था हमारे अंदर कि हमें कुछ कर दिखाना है। और उस समय हम जब बहुत ध्यान की उच्च अवस्था में होते थे, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर हमें जयपुर की बहुत अच्छी, केवल जयपुर के लिए मांगते थे कि हम बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर बने। और धीरे धीरे धीरे धीरे इस सब, जैसे योग जैसे जैसे जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता गया, योग को हम समझते गए, और हर स्टेप हमारा योग में होता गया, तो अपने आप हमारी क्वालिटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ गई, मैनेजमेंट क्वालिटी हमारी बढ़ गई। तो घर गृहस्थी को संभालते हुए बड़े अच्छे से हम योग के पथ पर चल पड़े, और अच्छे स्मूथली हम इसको कार्य करते रहे। और साथ में
1: क्या
0: देखिए,
1: जी, क्या बताना चाहेंगी कि इन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, आई कैन अंडरस्टैंड।
0: 100% श्योर। तो फैमिली सपोर्ट, यानी मेरे हस्बैंड जो हैं, वो 2007 में ही, उमेश शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं योगाश्री योगा सोसाइटी के, उन्होंने योगाश्री योगा सोसाइटी खोला, और 2010 में हमें सुअवसर मिला ज्वाइन करने का। तो उनका सपोर्ट तो देखिए, पति देव का सपोर्ट तो श्योर मिला हमें 100%। उसके साथ में हमारे साथ एक मोटिवेशन भी रहा, हमारी गुरु का भी मोटिवेशन हमारे साथ रहा। जैसे उमेश शर्मा जी एक गुरु के रूप में भी हमारे साथ रहे, उनसे हमने सीखा योग क्या है, कैसे हैं। और उसके साथ में पंडित राधेश्याम मिश्रा जी उज्जैन से, उनका भी बड़ा मोटिवेशन रहा। उन्होंने कहा कि हेमलता, आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। और फिर हमने धीरे धीरे धीरे धीरे, ये सारा सहयोग परिवार का जब रहा, तो हाँ, अपने आप ही एक अपने लिए रास्ता बनता है, परेशानियां आपको नहीं लगती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, और हौसला आपका और जज्बा आपका, जो जुनून है, वो खुलकर आपका बाहर आता है। और इसी तरह से हम अपने पति देव के मोटिवेशन से, वो हमारे गुरु भी हैं, उनके मोटिवेशन से, और राधेश्याम जी के मोटिवेशन से हम लगातार आगे बढ़ते गए।
1: जी, हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसे कि यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा। और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है, उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
0: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक है, आपकी होलिस्टिक हेल्थ है, आपकी संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये, साइंस है अपनी भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम

0: आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है। यानी आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार। और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बार के लिए पूरा, आप अगर 1 घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है। तो अपने योग अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर किया, जब लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है। और जब आत्मबल आपको आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग सबने पूरे विश्व में योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ध यानी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
1: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम्, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवत गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
0: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे, और देंगे जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहें। तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति, जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होकर उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%, श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। हाँ सुषमा जी, हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
1: बिल्कुल
0: है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं, बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है। यानी माइंड कुछ और कर रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी? तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे, तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कल्प है जो हमें योग कर्म शुरू, यानी योग जो है वो एक्शन विद अट्रैक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो अट्रैक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो। आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा।
1: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
0: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट, आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो। आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में आप उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं। आप करिए बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान नहीं दे रहे। और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपने श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टअप होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है। बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा? तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कटऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया। तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी। और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा विविद प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेके अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही है एक तरीका,
1: बिल्कुल। योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह की इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
0: जी, एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगे कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन से जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया, और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं, और साथ में योग जब आप करते हैं तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली, 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो ले, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ रहे गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने पर गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भिणी के रूप गर्भवती महिला

0: इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है क्या पीना है ये उनको बताया जाता है। मंत्रों का बड़ा महत्व, मंत्रों की ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन से मंत्र सुने क्योंकि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए इस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, थोड़ा
1: जी
0: सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती है, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला। तो ऐसे और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि तो इतना पहले जैसा लाइफ स्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी कार्य करने का, हमारी बड़ी सेडेंटरी स्टाइल हो गई है, तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे की अपने आप को पूरा योगासन में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है, तो ये बड़ा करना है।
1: जी, आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है। तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है?
0: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया सुषमा जी। आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा, जने आजकल तो आप बड़े बड़े कंपनीज में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं, स्कूल्स में देख लीजिए, क्योंकि योग क्या करता है इसके महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है कार्य। तो ये धीरे धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ गई। तो योग वो ऐसे नहीं कि केवल आसन कर लिया और आप बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग समझ, सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टेमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो योग करने से धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का YCB जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, हम इंडियन योगा एसोसिएशन से, हमारे योगा योगा सोसाइटी जो है वो एसोसिएट सेंटर है उसका, तो मिनिस्ट्री
1: जी
0: आयुष मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं, और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर जब करते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं, आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा। आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जो ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है।
1: जी, अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शियलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
0: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना, कमर्शियलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप पब्लिसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहा है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता है हर एक व्यक्ति दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए। बट हमारा बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत करो, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा

0: अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं, और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता है, आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है, और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है
1: जी।
0: इसलिए एक योग, अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें, अच्छे से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले वन नॉन वन करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है, और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
0: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात कर रहे हैं, और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक उसको भी ले लिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित, और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग में अपने जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो, तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ। हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप वो चीज को, असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाएं, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाएं। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माहौल पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है, आपको आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती बड़े आनंद भाव से लेती हैं, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद, हमें वर्कशॉप लेने में आनंद आता है, सेमिनार करवा लीजिए, योग के लिए तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में
1: जी। तो आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
0: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं, इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा विन्यास फ्लो हैं, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी है। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते हैं ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया, अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एक इस ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग को, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, अच्छा लगता है।
1: अपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज आयु वर्ग के हिसाब से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यास फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60+ वाले 65+ वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी हैं, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है, तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम कर लेते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में?
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के ऊपर स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही है, डायबिटीज क्या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप, और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है, और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, हर एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका बहुत अच्छा, तो ये बहुत
1: बिल्कुल। हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसकी यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा, और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है, तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
0: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक हेल्थ, आपकी होलिस्टिक हेल्थ है आपकी संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है अपने आप में, एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये साइंस है अपनी, भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है, यानी आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो एक बार के लिए पूरा आप अगर 1 घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है, तो अपने भी योग अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे किया, जब योग लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल को ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, या आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है। और जब आत्मबल आपको आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग सबने पूरे विश्व में योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ध यानी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
1: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम्, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवद गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
0: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम् मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे। और देंगे जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहें, तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति, जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होके उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%, श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। हाँ सुषमा जी, हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
1: बिल्कुल
0: है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं, बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है, यानी माइंड कुछ और कर रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी? तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करने से, यानी योग जो है वो एक्शन विद परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो, आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा बनाओ।
1: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
0: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट, आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो, आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में आप उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरी हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं। आप करिए बैठ, खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं। और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टर होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है। बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा? तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया। तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, जब आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी। और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा विविध प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेके अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही है एक तरीका
1: बिल्कुल। योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह की इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
0: जी, एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगे कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन है जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया, और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं। और साथ में योग जब आप करते तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली, 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भिणी के रूप गर्भवती महिला के अंदर जो फियर होता है और डर होता है वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इम्प्रूव हुआ। और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, तो इसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास, हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्भ के अंदर ही पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना, तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं, इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है। बच्चे से संवाद करना, यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, ये उनको बताया जाता है। मंत्रों का बड़ा महत्व,
2: मंत्र कितनी ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी मंत्र सुने कि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे
1: जी,
2: थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला। तो ऐसे और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि तो इतना पहले जैसा लाइफ स्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी कार्य करने का, हमारी बड़ी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासनों में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है। तो ये बड़ा करना है
1: जी। आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है।
2: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया सुषमा जी। आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा, सब जने आजकल तो आप बड़े बड़े कंपनीज में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं है, स्कूल्स में देख लीजिए, क्योंकि योग क्या करता है इसकी महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है कार्य। तो ये धीरे धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ गई। तो योग वो ऐसे नहीं कि केवल आसन कर लिया और आप बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टेमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो योग करने से धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का YCB जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, हम इंडियन योगा एसोसिएशन से, हमारे योगश्री योगा सोसाइटी जो है वो एसोसिएट सेंटर है उसका, तो मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर जब करते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं, आजकल को बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ हुआ इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा, आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जो ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है
1: जी। अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
2: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना, कमर्शलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप ऑबेसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता हर एक व्यक्ति दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए। बट हमारा बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं, और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता है, आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है, और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है
1: जी।
2: इसलिए एक योग, अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें अच्छे से, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले वन नॉन वन करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है, और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
2: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात रहे, और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक उसको नहीं ले लिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित, और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग में अपने जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो। तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ, हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप वो चीज को, असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाए, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाए। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माहौल पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है, आपको आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती बड़े आनंद भाव से लेती है, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद, हमें वर्कशॉप लेने में, सेमिनार करवा लीजिए, योग के लिए तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में
1: जी। तो आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
2: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं, इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा विन्यास फ्लो हैं, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी हैं। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया, अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग को, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी। योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, अच्छा लगता है।
1: आपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज आयु वर्ग के हिसाब से?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यास फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60+ वाले 65+ वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी है, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम कर लेते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में?
2: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही है, डायबिटीज के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप, और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल, अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका बहुत अच्छा, तो ये बहुत
1: बिल्कुल जी बीमारियों के लिए भी है और बहुत सारी जो आपने बातें बताई उनको लेकर भी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि खूबसूरती के लिए भी है, क्योंकि डॉक्टर हेमलता जी ने तो एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता हुआ है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुषमा जी की आपको याद रहा ये बात। हमने देखा है कि योग के माध्यम से आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, आत्मशक्ति आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप हर एक फील्ड के अंदर जाके देखो, तो फिर वही हम देखने गए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहां पे काम करा गया था, और हमने वास्तव में ब्यूटी पेजेंट जीता है, तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूड आपका अच्छा रहता है, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो जब आप खुश रहते हो, अंदर से खुश रहते हो, तो प्रसन्नता आपके चेहरे पे खिलती है और फिर आपका ग्लो बढ़ता है, तो अपने आप ही अच्छा फील होता है और आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आपका होता ही होता है, देखने में बड़ा अच्छा आपका शरीर आपका अच्छा हो जाता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है सुषमा जी। और वास्तव में फेशियल योगा आजकल हो गया है, फेस योगा आपका हो गया है, वो आप कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करने के लिए आपका सर्वांग आसन है, हलासन है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर आसन है जो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाता है, ओके आप इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, और डेफिनेटली योग ने तो हमारा तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है,
1: तो इतनी जी इतनी खूबसूरती से आपने जब ये सारा एक्सप्लेनेशन रखा है सबके सामने, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो भी खास तौर पे महिलाएं सुन रही हैं इस चीज को, वो जरूर ट्राई करना चाहेंगी ये सभी कोर्सेज जो आपने डिजाइन किए हैं अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजों को लेकर। डॉक्टर हेमलता, क्या मन में शेष है अपने प्रयासों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, किस तरह की उड़ान बाकी है?
2: देखिए, हम ये कहेंगे कि उड़ान तो हम बहुत उड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि योग को घर घर, तो वो सही ऑथेंटिक योग जो ट्रेडिशनल योग है उसको लोग समझे, लोग बात समझेंगे, योग को अपनाएंगे, अपने जीवन का सुधरेगा तो हर एक घर के अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा, निरोगी काया होगी, तो फिर दुख होंगे ही नहीं आपको, और फिर आप अच्छे से जियोगे अपनी लाइफ के साथ में, जीवन के साथ में, तो हर जगह पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होगा। और धीरे धीरे करते करते ऐसे सोच के देखिए कि सारा समाज, सारा राष्ट्र पूरा स्वस्थ है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं और सब जने अपने जीवन को बड़े ऊर्जावान होके आत्मविश्वास के साथ में अपने जीवन को जी रहे, तो पॉजिटिव एनर्जी एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे समाज के अंदर फैलेगी, तो राष्ट्र विश्व पूरा एक माहौल आपका जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बस इसके अंदर आगे बढ़ते जाऊं बढ़ते जाऊं बढ़ते जाऊं, ऑथेंटिक पारंपरिक जो हमारे योग विज्ञान है उसको मेरा हर पल जीवन का, मैं उसको बस आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से भूमिका निभाती जाऊं, यही मेरी इच्छा है। करो योग, रहो निरोग, योग
1: खूबसूरत
2: जीवन का बनाना है, अभिनंग बनाना है, एंड मेक योग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, देन इट विल बिकम आर्ट ऑफ लाइफ। बस इतना ही।
1: वेरी ब्यूटीफुल जी, चलिए बहुत खूबसूरत मैसेज आपका, और हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये उड़ान इसी तरह प्रफुल्लता से आप आगे बढ़ती रहें, ये उड़ान बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता शर्मा हमसे खास बातचीत करने के लिए।
2: मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से जो हम चाह रहे थे हमारे समाज को पहुंचाना, आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें पूछा, सभी के क्वेश्चंस आपने किए हमें, और ईश्वर करे ऐसा हो कि सबके अंदर वो एक चिंगारी जाग जाए कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लू, बस मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लू कि मुझे पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मुझे भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से मुझे स्वस्थ रहना है, अपनी जिम्मेदारी उठा लू, सब आगे बढ़े, योग को जीवन का अभिन्न बनाकर आगे बढ़े।
1: थैंक यू डॉक्टर हेमलता शर्मा, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू
3: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका, आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज, आपकी आवाज आपकी पहचान, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपनी फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज के नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित है श्वेता नायर त्रिवेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर त्रिवेदी।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहतावश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकाल कर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तुहें धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले मने लिया, एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसों पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भीड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा नाना भैया नानी मामी भौजी बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी, जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाव, जेके देखे के होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। विधवा बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहाँ इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुँचाया। पड़ोसियों ने गर्म राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियाँ मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गाँव वालों को खटका हुआ। सुखिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गाँव के लोग मुँह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गया, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा तो हर महतारी बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे कि मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखत हो बहनी, हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसकी अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारू साई मरी है तब का तब देख जायी, अब ही चल तू दोनों महतारी पुत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कबर में तो हर महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरे ही कह के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरे ही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोर तेरे ही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोटता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत के बाद कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जियब, हा हा हा। और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
0: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकारा रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखो इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: जीवन की अविरल धारा में बहुत से लम्हों को जीते हैं हम, जिनमें से कुछ खास लम्हे हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही पलों को जीवंत करने की कोशिश, बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए मेरे साथ हैं ओपी शर्मा। भगवत गीता में कहा गया है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। तो आज बातें योग की, उस खास योगिनी से जो योग को जीती हैं, दिव्य धारा सरस्वती आचार्य योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा, योगा मेडिटेशन कोच, स्पिरिचुअल कोच, प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट एंड को डायरेक्टर ऑफ योगा स्थली योगा सोसाइटी। नमस्कार डॉक्टर हेमलता शर्मा।
6: नमस्कार सुषमा जी।
5: आपसे मिलते ही आपकी प्यारी सी मुस्कान हमें पॉजिटिव वाइब्स भर देती है। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या राज है इसका, इस मुस्कान का।
6: देखिए सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग कॉम्प्लीमेंट। और मैं ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट अपने आप ही आती है जब आप हर पल को प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर केवल प्रेजेंट में आप जीने का आनंद लेते हैं वर्तमान में, तो अपने आप ही आपको 100% आप अपना क्वालिटी देते हैं, तो आप आनंद ही आनंद, हर पल आनंद। और वास्तव में आनंद समाया है, बस देखने की जरूरत है कि हर पल आनंद कहाँ है,
5: महसूस करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपको देखकर आपके साथ रहकर हम ये महसूस कर पाते हैं। तो कब आपकी जीवन यात्रा में योग शामिल हुआ?
6: देखिए योग शायद उस समय हमें ये नहीं पता था कि योग है। वैसे बचपन से ही हम बड़े आध्यात्मिक वातावरण के अंदर पले बड़े हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ से हमारा एजुकेशन हुआ है, तो वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ रहना, यज्ञ करना, ये हमारी उसमें था, एजुकेशन में था। और उसके बाद में हम परिवार का माहौल ऐसा था, और जैसे ही फिर हमारा विवाह हुआ, शादी हुई, उसके बाद में हाँ दो बच्चे होने के बाद में हमारा जो जर्नी है, उससे पहले हम आईटी अचौड़ी थे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। और फिर धीरे जो 2010 के अंदर हमें मौका मिला योग कक्षाओं को ज्वाइन करने का, और हमने योग कक्षा को जब ज्वाइन करा तो हमें लगा कि ये चीज है जो वास्तव में आप अपने आप के लिए जीते हो और एक बहुत ही लीगल कार्य आप करते हो, तो हमें अच्छा लगा अपने आप में। उस वहां से एक मोटिवेशन मिला हमें कि हेमलता आप इसके लिए बने हो, अब योग के लिए बने। तो बस वहीं से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट करा और फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखा।
5: एक गृहिणी, एक माँ के रूप में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने योगाचार्य की भूमिका को ग्रहण किया, बड़ा मुश्किल रहा होगा ये काम, तो कैसे ये भूमिका आपने अपनाई, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया?
6: देखिए जहां तक आपने कहा कि मुश्किल रहा, तो मुश्किल तो होता है। भारतीय अपनी गृहिणी के लिए बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को निभाना, फिर खुद के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, रास्ते हमने पूरा जुनून था हमारे अंदर कि हमें कुछ कर दिखाना है। और उस समय हम जब बहुत ध्यान की उच्च अवस्था में होते थे, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर हमें जयपुर की बहुत अच्छी, केवल जयपुर के लिए मांगते थे कि हम बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर बने। और धीरे धीरे धीरे धीरे इस सब जैसे योग जैसे जैसे जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता गया, योग को हम समझते गए, और हर स्टेप हमारा योग में होता गया, तो अपने आप हमारी क्वालिटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ गई, मैनेजमेंट क्वालिटी हमारी बढ़ गई। तो घर गृहस्थी को संभालते हुए बड़े अच्छे से हम योग के पथ पर चल पड़े और अच्छे स्मूथली हम इसको कार्य करते रहे। और साथ
5: क्या जी क्या बताना चाहेंगे कि इन लोगों का सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, आई कैन अंडरस्टैंड
6: 100% श्योर। तो फैमिली सपोर्ट यानी मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2007 में ही, उमेश शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं योगासली योगा सोसाइटी के, उन्होंने योगासली योगा सोसाइटी खोला, और 2010 में हमें सु अवसर मिला ज्वाइन करने का। तो उनका सपोर्ट तो देखिए, पति देव का सपोर्ट तो श्योर मिला हमें 100%। उसके साथ में हमारे साथ एक मोटिवेशन भी रहा, हमारी गुरु का भी मोटिवेशन हमारे साथ रहा। जैसे उमेश शर्मा जी एक गुरु के रूप में भी हमारे साथ रहे, उनसे हमने सीखा योग क्या है, कैसे हैं। और उसके साथ में पंडित राधेश्याम मिश्रा जी उज्जैन से, उनका भी बड़ा मोटिवेशन रहा। उन्होंने कहा कि हेमलता आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। और फिर हमने धीरे धीरे धीरे धीरे ये सारा सहयोग परिवार का जब रहा, तो हाँ अपने आप ही एक अपने लिए रास्ता बनता है, परेशानियां आपको नहीं लगती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो और हौसला आपका और जज्बा आपका जो जुनून है वो खुलकर आपका बाहर आता है। और इसी तरह से हम अपने पति देव के मोटिवेशन से, वो हमारे गुरु भी हैं, उनके मोटिवेशन से और राधेश्याम जी के मोटिवेशन से हम लगातार आगे बढ़ते गए।
5: जी हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसके यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा, और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
6: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक हेल्थ। आपकी होलिस्टिक हेल्थ है आपके संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये, साइंस है अपनी। भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है। यानी आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बार के लिए पूरा आप अगर एक घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है। तो अपने योग अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे किया, जब योग लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है। और जब आत्मबल आप आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग सबने पूरे विश्व में योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्द जल्दी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
7: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवद गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
6: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे, और देंगे जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहें। तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति, जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होकर उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट आएगा 100%, श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। हाँ सुषमा जी, हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
7: बिल्कुल
6: है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं, बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है, यानी माइंड कुछ और कर रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी? तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करने से, यानी योग जो है वो एक्शन विद परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो, आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा बनाओ,
7: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
6: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो। आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में आप उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं। आप करिए बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपने श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टअप होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है। बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा? तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कटअप होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया। तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी। और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा विविध प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेके अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही है एक तरीका,
7: बिल्कुल। योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं, तो आजकल कई तरह की इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
6: जी, एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगे कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन है जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया, और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं, और साथ में योग जब आप करते हैं तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली, 5 घंटे की भी नींद ली, और क्वालिटी वाली आपने नींद ली, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ रहे गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भिणी के रूप गर्भवती महिला के अंदर जो फियर होता है और डर होता है वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ा सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इम्प्रूव हुआ, और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, इसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्व के अंदर ही पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना, तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं। इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है, बच्चे से संवाद करना यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है क्या पीना है ये उनको बताया जाता है, मंत्रों का बड़ा महत्व, मंत्र ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन से मंत्र सुने कि उनके उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए इस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो, तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे
7: जी,
6: थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती है, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला ऐसे। और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि इतना पहले जैसा लाइफ स्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी कार्य करने का, हमारी बड़ी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो गर्भवती महिला जब एक घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासन में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना, कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है। तो ये
7: जी आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है।
6: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन।

0: सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टेमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो योग करने से धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का YCB जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, हम इंडियन योगा एसोसिएशन से, हमारे यूनिवर्सिटी योगा सोसाइटी जो है वो एसोसिएट सेंटर है उसका, तो हम मिनिस्ट्री
1: जी
0: आयुष मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं। और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं, तो बच्चे इसके अंदर जब पढ़ते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ
1: बिल्कुल
0: हुआ इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा। आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जैसे ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है।
1: जी। अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शियलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
0: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना। कमर्शियलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप पब्लिसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता है हर एक व्यक्ति दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए। बट हमारा बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपने बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत करो। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा। क्या
1: जी
0: समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है।
1: जी
0: इसलिए एक योग अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें, अच्छे से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले वन ऑन वन करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया। तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
0: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात कर रहे हैं और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक
1: अच्छा
0: उसको भी दे दिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग अपने आप में जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से

0: आगे लेके बढ़ो। तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ। हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप वो चीज को, असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाए, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाए। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माउथ पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है आपको, आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती बड़े आनंद भाव से लेती है, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद, हमें वर्कशॉप लेने में, सेमिनार करवा लीजिए योग के लिए, तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में
1: जी। तो बिल्कुल आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
0: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं, इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा विन्यास फ्लो है, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी है। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना, एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया, अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग को, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी, योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना, एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, अच्छा लगता है।
1: आपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज आयु वर्ग के हिसाब से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यास फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं, 60 प्लस वाले 65 प्लस वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी है, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है, तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम कर लेते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में?
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के रूप में स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं, डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज, हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप, और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल, अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, हर एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका, बहुत अच्छा। तो ये बहुत
1: बिल्कुल हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसे कि यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
0: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक हेल्थ, आपकी होलिस्टिक हेल्थ है आपके संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये, साइंस है अपनी, भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम, आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है। यानी अब आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बार के लिए पूरा, आप अगर एक घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है। तो अपने योग, अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर किया, जब योग लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है, और जब आत्मबल आपको आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग सबने, पूरे विश्व ने योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ध ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं, तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
1: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम्, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवत गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
0: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे, और देंगे जब आप बाहर के अंदर से बैलेंस रहें, तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो, कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति जब अपना फिजिकली मेंटली इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होकर उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%, श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली फिजिकली इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। हाँ सुषमा जी, हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
1: बिल्कुल
0: है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है। बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है, यानी माइंड कुछ और कह रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी। तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते रहते हैं आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करने से, यानी योग जो है वो एक्शन में, परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो, आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा।
1: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
0: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट, आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो, आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में आप उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं, आप करिए, बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टर होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है, बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा, तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कटऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके, प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया, तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी, और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा विविद प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेकिन अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप आप आनंद की अनुभूति करते हैं, और यही है एक तरीका।
1: बिल्कुल, योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह के इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
0: जी, एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगी कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन है जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं। और साथ में योग जब आप करते हैं तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली, 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पर बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ रहे गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बींग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भिणी के रूप गर्भिणी गर्भवती महिला के अंदर जो फियर होता है और डर होता है वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इंप्रूव हुआ। और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास, हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्भ के अंदर ही पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना, तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है। बच्चे से संवाद करना यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है क्या पीना है ये उनको बताया जाता है। मंत्रों का बड़ा महत्व, मंत्रों के अंदर बड़ी ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन से मंत्र सुने क्योंकि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे
1: जी,
0: थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती है, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला ऐसे। और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि तो इतना पहले जैसा लाइफस्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी, कार्य करने का हमारी बड़ी सेडेंटरी स्टाइल हो गई है, तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासनों में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है। तो ये बड़ा करना है
1: जी, आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है?
0: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया सुषमा जी। आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा, सब जने आजकल तो आप बड़े बड़े कंपनीज में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं है, स्कूल्स में देख लीजिए, क्योंकि योग क्या करता है इसकी महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है कार्य। तो ये धीरे धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ गई। तो योग वो ऐसे नहीं कि केवल आसन कर लिया और आप बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टेमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो योग करने से धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का YCB जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, हम इंडियन योगा एसोसिएशन से, हमारे यूनिवर्सिटी योगा सोसाइटी जो है वो एसोसिएट सेंटर है उसका, तो मिनिस्ट्री
1: जी
0: आयुष मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं। और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं, तो बच्चे इसके अंदर जब करते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ
1: बिल्कुल
0: हुआ इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा। आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जैसे ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता
1: जी।
0: है।
1: अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शियलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
0: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना। कमर्शियलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप अभेसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता हर एक व्यक्ति दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए। बट हमारा ये बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा।
1: जी
0: समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है और वो 1-to-1 कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है।
1: जी
0: इसलिए एक योग अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें, अच्छे से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले 1-on-1 करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया। तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
0: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात रहे और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक
1: अच्छा
0: उसको भी दे दिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग अपने आप में जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो। तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ, ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप वो चीज को, असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाए, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाए। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माउथ पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है आपको, आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती है बड़े आनंद भाव से लेती है, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद आता है, हमें वर्कशॉप लेने में आनंद आता है, सेमिनार करवा लीजिए योग के लिए, तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में
1: जी। तो आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
0: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं इंस्टेंट वर्कआउट के, अष्टांग योगा, विन्यास फ्लो है, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी है। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते हैं ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना, एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया, अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग को, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी, योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना, एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, तो अच्छा लगता है।
1: आपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज आयु वर्ग के हिसाब से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यास फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60 प्लस वाले 65 प्लस वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी है, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है, तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम कर लेते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हिमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में?
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के ऊपर स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही है, डायबिटीज क्या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज, हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप। और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल, अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, हर एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका बहुत अच्छा। तो ये बहुत
1: बिल्कुल जी बीमारियों के लिए भी है और बहुत सारी जो आपने बातें बताई उनको लेकर भी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि खूबसूरती के लिए भी है, क्योंकि डॉक्टर हेमलता जी ने तो एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुषमा जी कि आपको याद रहा ये बात। हमने देखा है कि योग के माध्यम से आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, आत्मशक्ति आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप हर एक फील्ड के अंदर जाके देखो, तो फिर वही हम देखने गए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहां पे काम करा गया था। और हमने वास्तव में ब्यूटी पेजेंट जीता है, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूड आपका अच्छा रहता है, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। तो जब आप खुश रहते हो, अंदर से खुश रहते हो, तो प्रसन्नता आपके चेहरे पे खिलती है और फिर आपका ग्लो बढ़ता है, तो अपने आप ही तो अच्छा फील होता है और आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आपका होता ही होता है। देखने में बड़ा अच्छा, आपका शरीर आपका अच्छा हो जाता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है सुषमा जी। और वास्तव में फेशियल योगा आजकल हो गया है, फेस योगा आपका हो गया है, वो आप कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करने के लिए आपका सर्वांगासन है, हलासन है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर आसन है जो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाता है। ओके, आप इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और डेफिनेटली योग ने तो हमारा तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है।
1: तो इतनी खूबसूरती जी, इतनी खूबसूरती से आपने जब ये सारा एक्सप्लेनेशन रखा है सबके सामने, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो भी खासतौर पे महिलाएं सुन रही हैं इस चीज को, वो जरूर ट्राई करना चाहेंगी ये सभी कोर्सेज जो आपने डिजाइन किए हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीजों को लेकर। डॉक्टर हेमलता, क्या मन में शेष है अपने प्रयासों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, किस तरह की उड़ान बाकी है?
0: देखिए, हम ये कहेंगे कि उड़ान तो हम बहुत उड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि योग को घर घर तक, वो सही ऑथेंटिक योग जो ट्रेडिशनल योग है उसको लोग समझे, लोग बात समझेंगे, योग को अपनाएंगे, अपने जीवन का सुधरेगा, तो हर एक घर के अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा, निरोगी काया होगी, तो फिर दुख होंगे ही नहीं आपको, और फिर आप अच्छे से जियोगे अपनी लाइफ के साथ में, जीवन के साथ में, तो हर जगह पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होगा। और धीरे धीरे करते करते ऐसे सोचिए, देखिए कि सारा समाज, सारा राष्ट्र पूरा स्वस्थ है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं और सब जने अपने जीवन को बड़े ऊर्जावान होके, आत्मविश्वास के साथ में अपने जीवन को जी रहे, तो पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे समाज के अंदर फैलेगी, तो राष्ट्र, विश्व, पूरा एक माहौल आपका जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बस इसके अंदर आगे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, ऑथेंटिक पारंपरिक जो हमारे योग विज्ञान है उसको मेरा हर पल जीवन का, मैं उसको बस आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से भूमिका निभाते जाऊं, यही मेरी इच्छा है। करो योग, रहो निरोग, योग
1: खूबसूरत
0: जीवन का बनाना है, अभिनंग बनाना है, एंड मेक योग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इट विल बिकम आर्ट ऑफ लाइफ। इतना
1: ही, ब्यूटीफुल जी। चलिए, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका, और हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये उड़ान इसी तरह प्रफुल्लता से आप आगे बढ़ती रहें, ये उड़ान बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता शर्मा हमसे खास बातचीत करने के लिए।
0: मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से जो हम चाह रहे थे हमारे समाज को पहुंचाना, आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें पूछा, सभी के क्वेश्चंस आपने किए हमें, और ईश्वर करे ऐसा हो कि सबके अंदर वो एक चिंगारी जाग जाए कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूं, बस मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूं कि मुझे पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मुझे भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से मुझे स्वस्थ रहना है, अपनी जिम्मेदारी उठा लूं, सब आगे बढ़े, योग को जीवन का अभिन्न बनाकर आगे बढ़े।
1: थैंक यू डॉक्टर हेमलता शर्मा, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू राजीव।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज, आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, वो आंचल जिसमें नारी शक्ति अपने आंचल में साहित्यिक सितारों को समेट कर लाती हैं। और इस प्रोग्राम की एक किरदार साहित्यिक किरदार होती हैं। आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश, जिसको

0: भारत का दिल कहते हैं, उस दिल से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हेमलता शर्मा। हेमलता मूलतः मालवा प्रदेश जो क्षेत्र है उससे संबद्ध है, बेसिकली वहां से उठ के इंदौर अपना साहित्यिक क्षेत्र बढ़ा रही हैं और शासकीय सेवा दे रही हैं, और साथ साथ बहुत जरूरी जो काम होता है वो ये कि लोक संस्कृति को, लोक भाषा को एक साथ इकट्ठा करके रखना। क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिसमें पल रहे हैं, उसमें न जाने हमारे पास ये लोक संस्कृति के जो अवशेष हैं वो रह पाएंगे या नहीं, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसी चिंता के विषय को दूर करने के लिए हेमलता शर्मा, जिसे भोली बहन भी कहते हैं, वो हमारे साथ हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति के आंचल में। और जयपुर रेडियो इस प्रोग्राम में ऐसी ही साहित्यिक शक्तियों को आप तक पहुंचाता है, लाता है। तो वेलकम है इंदौर की हेमलता शर्मा। भोली बहन का इतना परिचय जितना मैं जानता था मैंने श्रोताओं को परिचय करवा दिया है। आगे हम अनुरोध करेंगे भोली बहन यानी हेमलता जी से कि आप अपने बारे में बताएं।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां शुरुआत करती हूँ। मालवा की बेटी हूँ, मालवा की बेटी हूँ, मालो प्रदेश से आई हूँ, मालवी की मिठास साथ अपने लाई हूँ। कर लीजिए रसपान आप भी, हिंदी अपनी माँ है तो बेटी है मालवी बोली।
0: वाह, माला माल कर।
1: ये मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय है जी। और जैसा कि आपने कहा, मैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आती हूँ। आगर मालवा में मेरा जन्म हुआ है और अभी कर्मस्थली मैंने इंदौर को बना के रखा हुआ है। और इंदौर जैसे कि आपने कहा भारत का दिल है, वाकई मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय प्रदेश है और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का हृदय है। और मेरा जो काम अभी चल रहा है मालवा की लोक भाषा मालवी के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। तो अभी वर्तमान में ये हो रहा है कि मालवा की जो लोक भाषा है मालवी बोली ये पिछड़ती जा रही है, लगभग ये विलुप्त प्राय सी हो रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो नई पीढ़ी है वो मालवी शब्दों से, मालवी लोकगीतों से, मालवी लोक कथाओं से, मालवी वार्ताओं से परिचित हो सके और उसको बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो मैंने अपना एक अभियान सोशल मीडिया पे भी छेड़ रखा है कि क्योंकि आजकल नई पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, पुस्तकें कम पढ़ती हैं। तो साहित्य की ओर उनका कैसे रुझान हो, जी साहित्य की ओर उनका नई पीढ़ी का रुझान कैसे हो और वो कैसे मालवा से और मालवा की जो पारंपरिक अपनी परंपराएं जो चल रही हैं, सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं वहां की, मालवा का जो लोक साहित्य है उससे वो कैसे उससे परिचित हो पाए, जो मौखिक परंपरा के रूप में मालवी लोकगीत जो अभी भी चले आ रहे हैं लेकिन अब वो सुनने को नहीं मिलते। तो जो हमारी पिछली जो पीढ़ी है यदि वो खत्म हो जाती है तो उनके साथ साथ ये सारी चीजें भी विलुप्त हो जाएगी। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मालवी बोली का मैं संरक्षण कर सकूं, उसका संवर्धन कर सकूं और इसी विषय में मेरी सारा लेखन कार्य मेरा चल रहा है, संग्रहण संकलन का कार्य भी जारी है और मैं लगी हुई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात और इतना शानदार परिचय आपका है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लोक साहित्य को हिंदी में आपने शामिल किया है और हिंदी में लोक साहित्य है और हर साहित्यकार जब भी पढ़ता है उसकी अपनी बेसिक आधारभूत जो भाषा होती है, बोली होती है, उससे उसका लगाव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपका जो जुड़ाव है वो किस तरह से पनपा शुरू से, या बाद में आप जब इस पद पे आई?

0: उसके बाद ये चीजें विकसित होती रहीं, इसके बारे में बताएं।
1: जी, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म आगर मालवा में हुआ, और आगर मालवा में आप यदि अभी भी चले जाएंगे तो पूरे आगर मालवा में मालवी ही बोली जाती है। वहां के व्यापारी हुए, चाहे छोटे दुकानदार हुए, आम जनता हुई, या प्रशासनिक क्षेत्र में भी कोई लोग जो वहां पर कार्यरत होंगे तो वो हिंदी का प्रयोग कम करते हैं, वहां पर मालवी ही चलती है। और मेरे घर में भी संयुक्त परिवार था और मालवी ही बोली जाती थी। मतलब मेरी जो माता जी है उनको तो अभी भी हिंदी बोलना ही नहीं आता, वो मालवी में ही बात करती हैं। तो मालवी से जुड़ाव तो हमारा गहरे तक रहा। बचपन से ही हमने सबको बोलते देखते सुना, और फिर प्रशासनिक सेवा की तैयारी में मैं लग गई, तो मेरा थोड़ा सा वहां से बाहर भी पढ़ाई लिखाई के लिए जाना हुआ। तो फिर जब वहां हम गए और मेरा जब सिलेक्शन हुआ MPPSC में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें मेरा चयन हुआ, तो जब हम एकेडमी में गए, नरोन्ना पनिक अकादमी है भोपाल में जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां पर जब हम गए तो वहां पे सभी क्षेत्रों के, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सभी जगह के लोग आए हुए थे। और वे सभी जब मैं देखती थी तो क्षेत्र से तो मैं ही थी, तो जब मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि अरे मालवी, क्योंकि मालवी को सामान्यतः क्या है, गांव की पिछड़ी हुई भाषा, लोक भाषा समझा जाता है
0: जी।
1: और सामान्यतः जैसे यदि कोई मालवी में बात करता है तो ये बोला जाता है कि अरे ये तो गंवार है, या इसे अंग्रेजी नहीं आती, या इसको कुछ पता नहीं है
0: जी।
1: इस तरीके से। तो फिर वहां से मेरे मन में ये हुआ कि जब ये लोग अपनी लोक भाषा को इतना महत्व दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देते, तो कुछ न कुछ प्रयास अपनी माटी के लिए भी, अपनी बोली के लिए भी करना चाहिए। तो वहीं फिर क्योंकि कविताएं तो मैं 93 से लिखी रही हूँ, तो हिंदी में पहले मेरा लेखन कार्य चलता था, और कुछ समय के लिए कॉलेज टाइम में शेरो शायरी भी करना शुरू किया था
0: जी।
1: तो थोड़ा सा कहते हैं झुकाव उन चीजों की ओर भी हुआ, फिर मालवी की ओर बढ़े। तो कुछ फिर मैंने अपनी कविताएं थी तो उसका एक प्रकाशन, मैंने उसका संग्रह मालवी कविताओं का एक निकाला, और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि वो मालवी काव्य संग्रह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने उसको मालवी के सबसे बड़े पुरस्कार संत पीपा स्मृति सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान से उस पुस्तक को पुरस्कृत किया। तो ये मेरे लिए एक गौरव का विषय रहा, और मेरी कहना चाहिए कि मातृ बोली ने मुझे ये सम्मान दिलाया तो उसका मेरे हृदय में सम्मान और भी बढ़ गया। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब तो लोक भाषा के लिए मुझे काम करना ही है, और जो लोग इससे दूर जा रहे हैं उनको इस ओर लाना है। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने जो मालवी के लोग थे जो लिख रहे थे इस पर, तो मैंने उन लोगों से संपर्क साथ कोशिश की, वो सारे साक्षात्कार मेरे YouTube चैनल पर अभी अवेलेबल हैं।
0: जी,
1: लोग लिख रहे थे जिनसे भी मैं संपर्क कर पाई, उन सभी के मैंने साक्षात्कार, उनके सभी के साक्षात्कार मैंने उनको सोशल मीडिया पे प्रचारित प्रसारित किया
0: जी।
1: तो वो एक रहा। फिर मैंने, मुझे लगा कि मालवी कहावतें और मुहावरे हैं जिनको
0: जी
1: जड़ी के वड़ाया के नावत या इस तरीके से, तो ये एक बहुत अच्छी वाचिक परंपरा भी लोक भाषा या संस्कृति को नई पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए। तो मैंने फिर अपनी उस पुस्तक पर काम करना शुरू किया, तो फिर मैं अपनी मालवी लोकोक्ति और मुहावरों की पुस्तक एक लेकर आई, जिसमें मैंने लगभग 1200 मालवी लोकोक्ति और मुहावरों का संग्रहण किया। तो उससे भी लोगों से संपर्क, और सोशल मीडिया मेरे लिए अच्छा माध्यम था, वहां पर मैं लोगों से बातचीत करती रहती थी, और जो जिन क्षेत्रों तक मैं नहीं पहुंच पाती थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने मुझे चीजें संकलित करने में योगदान दिया, मालवा के लोगों ने। और जो संजा भाई, एक लोक पर्व है हमारे यहाँ मालवा में, संजा पर्व
0: जी,
1: तो संजा पर्व ने लोगों को मुझसे बहुत जोड़ा, क्योंकि संजा पर्व जब भी आता था तो वो श्राद्ध के समय आता था और वो 16 दिन का पर्व मनाया जाता है, 16 दिन तक। तो उसमें ये मान्यता है कि जो घरों में कुंवारी कन्याएं होती हैं वो संजा बाई की आकृति अपने दीवार पर बनाती है गोबर से, और फिर संजा बाई की मनुहार करती है, उनके गीत गाती है, इस तरह की परंपरा है। तो मैंने वो सारे गीत क्योंकि बचपन में गाए थे और संजा हम भी बनाते थे तो मुझे ये आते थे, तो मैंने वो सोशल मीडिया पे सारे गीत अपने लाइव करना शुरू किए, तो मुझसे मालवा के काफी लोग जुड़े और उससे मुझे काफी प्रसिद्धि मिली। और फिर संजा पर्व नाम की भी एक पुस्तक मेरी उसमें प्रकाशन में आई, तो एक पुस्तक वो मेरी हो गई, मालवी लोकोक्ति और मुहावरे की हो गई। फिर इस बीच मुझे कहीं से प्रेरणा मिली कि उपन्यास कोई उपलब्ध नहीं है मालवी में। तो अब मैं तत्काल में इतनी जल्दी लिख तो नहीं सकती थी अभी, हालांकि मैं उपन्यास एक लिख रही हूँ जिसका शक है कि भोली सब कर ही लेगी
0: जी।
1: भोली मतलब मेरे ही जीवन पर आधारित है वो
0: जी,
1: और उसको मैं अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, वो उसको मैं अभी लिख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी से, चूंकि उस समय ये था कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, और पुराने समय में जैसे लोग क्या है कहानी किससे पढ़ते रहते थे, तो जो पुराने लोग थे वो नॉवेल पढ़ने में उनकी रुचि रहती थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये मालवी की ओर भी प्रवृत्त हो और इनका रुझान हो जाए कि मालवी कोई उपन्यास ऐसा आ जाए। तो एक हरिशंकर परसाई जी का लघु उपन्यास था तट की खोज
0: जी,
1: तो फिर मैंने उसको मालवी में रूपांतरित करने का बीड़ा उठाया और उसको उन्होंने पूरा रूपांतरित किया, तो वो मालवी उपन्यास एक मेरा प्रकाशन में आया किनारा की खोज के नाम से। और ये सभी पुस्तकें मेरी अमेजॉन वगैरह पे उपलब्ध हैं, गूगल पे सर्च करके कोई भी इनको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से कोशिश करती रही, एक अभी मालवी का शब्दकोश भी मेरा अभी प्रकाशित हुआ है, वो भी काफी मशक्कत भरा काम रहा मेरे लिए। और मालवी रचनाएं और ये लिखने का सारा काम तो मैं करती ही हूँ, और कोरोना काल में एक बड़ी उपलब्धि और मेरी रही कि हाँ मैंने कोशिश की कि जैसे मालवी में अपन अभिवादन जो करते हैं तो मालवी में राम राम या जय राम जी की बोला जाता है
0: जी,
1: तो मैंने सोचा कि एक भगवान का नाम भी रहता है, राम जी से ईश्वर से जुड़ने का सब लोगों को मौका मिलेगा, और कम से कम इस बहाने मालवी बोलना सीखेंगे लोग तो उनका रुझान बढ़ेगा। तो मैंने एक मालवी सुविचार प्रतिदिन अपने ब्लॉग पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वॉल पे पोस्ट करना शुरू किया, तो लोग उससे जुड़े, और उसमें मैंने सबको जय राम जी की बोलने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया, तो उसपे कई सारे लोग आके कमेंट में, उनको और कुछ मालवी आती हो या ना आती हो लेकिन वो जय राम जी की जरूर लिख देते थे, तो उतना भी मेरे, और मैं सबके जवाब देती थी। मेरी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि मैं सभी जो भी लोग उस पे आ रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो मैं बराबर उनकी उनके प्रश्नों के जवाब देती थी, उनकी कोई ऐसी शंका है तो वो समाधान करती थी, कुछ चीज वो जानना चाहते हैं तो वो मैं उनको बताने का प्रयास करती थी। हालांकि मैं भी कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ, तो मैं भी अपने घर में अपनी माताजी से पूछ के या और कहीं से पता करके वो चीजें बता देती थी, तो सबको लगता था कि हाँ ये तो कितनी मतलब सरल सहज है सारी बातों का, ये बिल्कुल हमें बता देती है कि इसका ऐसा होता है, ये वैसा होता है, हर बातों का जवाब।
0: तो आपको भोली बहन कहते हैं, तो भोली बहन जय राम जी की के साथ हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य और साहित्य की आप स्टूडेंट रही हैं, उनकी शोधार्थी रही हैं, विद्यार्थी रही हैं साहित्य की, तो जो भी हिंदी साहित्य है वो लोक भाषाओं से ही बना है, उपजा है और पैदा हुआ है, तो उसमें मालवीय का कितना योगदान है, कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि हम तो अब उस हिंदी ने उस सबको पचा लिया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा समुद्र है जो उसमें सारी नदियां मिल गई हैं, भाषा की, लोक भाषा की, बोली की, जो भी है वो सब मिल गई है, तो हम यदि पहचाने के, या जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि जयपुर रेडियो तो वर्ल्ड लेवल पे सुना जाता है और हो सकता है कोई मालवीय जो हो दूसरे देश विदेश में सुन रहा हो इस प्रोग्राम को, तो हम कैसे जाने कि हिंदी में कितना मालवीय कोश है, या कितना हिस्सा या कितना शेर है मालवीय का, बताएंगे आप कुछ?
1: हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है, और मालवी जो बोली है उसकी भी लिपि देवनागरी ही है
0: जी।
1: तो ऐसा पृथक से कहीं कोई इसका मालवी का जो व्याकरण है वो हिंदी भाषा का ही व्याकरण है।
0: जी बहुत अच्छी।
1: तो जो शब्द अपने आते हैं काफी इसमें मिलते जुलते रहते हैं, बस एक बोलने की जो टोन रहती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो जैसे हिंदी भी अपने आप में एक समृद्ध भाषा है और इसने भी कई भाषाओं से जैसे अंग्रेजी से उर्दू से शब्दों को उधार लिया है और अपने आप को समृद्ध किया है। इसी तरह से मालवी ने भी कई भाषाओं से चीजें शब्द लेकर के अपने आप को समृद्ध किया है और अपने आप को बढ़ाया है। और मालवी का शब्दकोश जो है इसी से समृद्ध भी हुआ है। कई सारे शब्द हम मालवी शब्दकोश में मैं समाहित कर पाई हूँ, अभी भी कई सारी चीजें छूटी हुई हैं। तो कोशिश करूंगी कि प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया उसमें जोड़ते जाएं, क्योंकि चीजें तो प्रतिदिन कुछ न कुछ नई हमें मिलती ही रहती है। जैसे अपना अंग्रेजी का एक शब्द है अपना टाइम, तो टाइम को हिंदी ने भी एज इट इज मतलब मैंने समाहित किया है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो टाइम को हम हिंदी में लिख लेते हैं, उसको इंग्लिश में हम नहीं मतलब मानते हैं, हिंदी ने उसको एकाकार कर लिया है अपने में। तो इसी प्रकार से मालवी ने उस टाइम को टेम, कई टेम हुआ ऐसे, तो मालवी के जो लोग थे वो टाइम को टेम मतलब अपने हिसाब से बोलने की जो सहूलियत है, क्योंकि मालवा का जो एक ठेठ गांव का जो आदमी है ग्रामीण व्यक्ति है वो उसका उच्चारण इतना स्पष्ट नहीं होता। और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदी का शुद्ध उच्चारण करते ही नहीं है, मध्य प्रदेश वाले ये अशुद्ध उच्चारण करते हैं, है ना। तो
0: नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि जो दिल से करते हैं और दिल से जो बात निकलती है वो तो अच्छी होगी। और
1: देशजी शब्दों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मतलब दिखाई ही देता है। कोई सी भी हम बात करें या कुछ भी हम लिखना भी शुरू करेंगे तो हिंदी और मालवी को ऐसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये शब्द हिंदी का है। अब धरती, तो धरती शब्द हिंदी में भी आएगा मालवी में भी आएगा। फल फूल, तो फल फूल शब्द हिंदी में भी है मालवी में भी है। तो आप उसको ऐसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते कि हिंदी एकदम अलग है और मालवी अलग, क्योंकि दोनों की लिपि देवनागरी है और जो उनका पूरा संसार है, भाषा संसार है, वो उसी में रचा बसा है। तो एक दूसरे से आपस में वो शब्द उधार लेते रहते हैं। और कई बार क्या होता है जैसे कविता लिखते हैं हम, तो रस छंद अलंकार जब हम इसमें प्रयोग करें तो जैसे ना गजल में काफिया मिलाते हैं
0: जी।
1: तो हम लय ताल मिलाने के लिए भी कई बार हम हिंदी शब्द का भी उपयोग कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी भाषा को समृद्ध बनाना है, उसको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हिंदी से हम अलग करके चलेंगे, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है।
0: बहुत सही बात कही आपने। और हाँ, भोली भोली सब कर लेगी, ये तो आपने सिद्ध कर दिया एकदम पक्की तौर पे सिद्ध हो गया कि भोली सब कर लेगी। वैसे तो आपकी उपन्यास का नाम है लेकिन वो आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है, ये जो शीर्षक है उपन्यास का कि भोली सब कर लेगी। तो आपने ये बात हमें बताई। इसके अलावा जो मालवी में जो मिठास है, मालवी की कोई लघु कथा है तो वो उसका जरा सा परिचय हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि कोई लोक से जुड़ी हुई ऐसी कोई कथा हो या कोई कहानी हो तो वो आप सुनाएंगे हमें।
1: बिल्कुल मालवी
0: उसी अंदाज में,
1: और मालवी बोली को हाँ मीठी भाषा ही कहा जाता है। और जैसे कि हम बोले कि मालवी में जैसे कहा जाता है मैं तुम्हारे किस दू कहीं, तो किस जो होता है वो मालवी में भुट्टे की एक डिश होती है, भुट्टा जो आता है उसको कद्दूकस करके और उसको बढ़िया तेल में फ्राई करके और उसमें हरी मिर्च राई वगैरह डाल के बढ़िया से फ्राई करके अच्छे से पकाया जाता है और बड़ी स्वादिष्ट डिश होती है वो
0: जी।
1: तो यदि हम किसी को ये बोले कि मैं तुम्हारे किस दू कहीं तो एक हास्य का माहौल उत्पन्न होता है, क्योंकि किस शब्द इंग्लिश के यदि हम उसमें देखें तो चुंबन से मिलता जुलता है, उसका अर्थ वहां यदि हम निकाले। तो इस तरह से मालवी लोक भाषा जो है अपने में मिठास लेके समाहित को किए हुए हैं। और मालवी में कहा जाता है कि यदि

0: अच्छा लग रहा है।
1: ये भी साहित्य का एक अपना स्वरूप है, रूप है, और हमारी लोक संस्कृति का इसमें इसे दर्पण कह सकते हैं हम। आपने बातों बातों में हमें बताया कि आपने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, साहित्यिक कार्यक्रम है, और नाम है अभिव्यक्ति का आंचल, और उस आंचल में अलग तरह के सितारे जड़े हैं और साहित्य की हवा बह रही है। और हमारे साथ हैं हेमलता शर्मा, इंदौर मध्य प्रदेश से। हम सुनने वालों को प्रोग्राम के बीच में भी बता देते हैं ताकि सुनने वालों की जिज्ञासा शांत हो। तो कविताओं के बारे में यदि हम बात करें तो कोई कविता आप सुनाएंगे हमें?
0: जी बिल्कुल, मैं एक हाथ रस से भरपूर कविता मालवी की सुनाना चाहूंगी। उसमें पति पत्नी की नोकझोंक का मैंने चित्रण करने का प्रयास किया है कि पति पत्नी से वादा करता है कि मैं कल तुमको सिनेमा दिखाने ले चलूंगा और तुम तैयार रहना।
1: अच्छा,
0: मैं आऊंगा और शाम को हम चलेंगे मूवी देखने और मैं टिकट विकेट लेकर आऊंगा, ऐसा उसका वादा करता है। लेकिन वो काम में इतना उलझ जाता है कि वो टिकट लाना भूल जाता है,
1: जैसे अक्सर होता है।
0: कैसी स्थिति निर्मित होती है जी
1: पुरुषों के साथ, अक्सर ऐसा ही होता है। जी
0: जी जी जी जी, तो महिलाएं नाराज हो जाती हैं, तो फिर पति का क्या हाल होता है और पत्नी कैसे नाराज होती है, उस सबका चित्रण मैंने अपनी मालवी कविता में किया है। उस कविता का शीर्षक मैंने रखा है बैरा को सिनेमा प्रेम।
1: बैरा
0: तो लाने की, बैरा मतलब जो पत्नी है उसको बैरा बोला जाता है।
1: हाँ,
0: तो बैरा को सिनेमा प्रेम।
1: जी ओके, अच्छा, पत्नी का सिनेमा प्रेम।
0: गरम जी आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। राम्यो जो है वो कैरेक्टर है और वो अपना पति धर्म, हाँ पति धर्म वो भूल गया है, आज मामला गरम हो रहा है। आज

0: सिनेमा पण टिकटा लाणो भूली गयो।
1: अरे वाह।
0: सुध बुध भूलो राम्यो ने ठोक्यो ओने अपनो करम। मतलब वो टिकट लाना भूल गया है और घर आया है तो बोले अब मैं क्या जवाब दूंगा,
1: अपने सर पे हाथ लगा के कहता है ये तो बस गया,
0: कैसे समझाऊंगा। जी जी बिल्कुल। अब देखिए कि उधर सिनेमा हाउस फुल हो चुका है और पत्नी जिद किया बैठी है कि मैं तो तैयार हूँ, मुझे लेके चलो। तो अब ये वहां जाते हैं
1: जी।
0: वही सिनेमा हाउस फुल हुओ आई बैरा को पारो चढ़ी गयो। ओ की बैरा घणी रिसाणी चंडी को स्वरूप धर्यो। बर्तन भांडा फूटी गया ने राम्या ने पकड़िया चरण। आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धर्म। मतलब ये स्थिति आ गई है कि अब बर्तन भांडे तक फूट गए हैं और पति ने पत्नी के चरण पकड़ लिए हैं कि अब क्या करें। सिनेमा हाउस फुल हो चुका है,
1: क्या बात।
0: अब पत्नी तैयार है, उसका बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, वो तो रणचंडी बन गई है। अब देखिए आप आगे क्या होता है
1: जी।
0: रुद्र रूप में आई बैरा ने हाथ अस्त्र बेलन धर्यो। स्त्री का सबसे बढ़िया हथियार बेलन होता है।
1: वेरी गुड, वेरी।
0: रुद्र रूप में आई बैरा ने हाथ अस्त्र बेलन धर्यो। आज कुटुआ हूँ थमके गड़बड़ सगलो काम करो मुड़ मारो तमने आफ। देखिए मुड़ मुड़ शब्द जो है ये इंग्लिश का है, लेकिन इसने इसमें मालवी ने इसको अपने आप में समाहित कर लिया है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी पंक्ति बन रही है कि आज कुटुआ हूँ थमके

0: गयो, गावड़ो मतलब गर्दन, बेलन फेंक के मारा तो गर्दन पे लगा और
1: गर्दन पे
0: गर्दन
1: लगी।
0: तोड़
1: आहा,
0: गई।
1: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि
0: बेलन
1: मेरे को
0: फेंक
1: लग रही है।
0: तो राम आके बेलन।

0: गयो। अंत में फिर क्या करता है वो, हाथ जोड़िया ने हड़िया खाया। हड़िया खाना मालवा में एक ये है कि बहुत ज्यादा हम किसी की मिन्नत करते हैं तो
1: जी
0: घुटनों पे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ऐसे मुंह में लेते हैं उंगलियों को, और ऐसे हड़िया खाना उसको बोलते हैं। तो
1: ये
0: हाथ
1: हमारे लिए नया है।
0: जोड़िया ने हड़िया खाया यो सगलो भ्रम, मतलब उसका भ्रम सारा टूट गया कि पति परमेश्वर होता है।
1: बह गया
0: पति
1: जी।
0: परमेश्वर होने का भ्रम आज टूट गया जब बेलन से मार पड़ी।
1: बहुत
0: हाथ
1: खूब।
0: जोड़िया ने हड़िया खाया टूटी गयो सगलो भ्रम, आज मामलो हुओ गरम, राम यो भूल्यो पति धर्म। तो ये ऐसी स्थितियां हैं कि ये हर किसी के साथ निर्मित होती रहती है। तो एक ये हास्य रस का मैंने यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की थी, और ऐसी जो रचनाएं रहती हैं तो वो लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: अपने जीवन में वो सब घटित होता हुआ, हाँ चित्रित होता हुआ दिखाई देता है कि वास्तव में ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो जब लोग उसको सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, तो
1: बहुत
0: वो
1: सुंदर, बहुत
0: जुड़ते हैं
1: सुंदर,
0: उससे।
1: बिल्कुल। सभी जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी अपनी अपनी पत्नी को देख के उसकी कल्पना करता है और उसी अनुसार
0: बिल्कुल
1: बेलन से
0: बिल्कुल
1: मार
0: बिल्कुल।
1: खाने
0: और
1: की।
0: चाहे व्यक्ति बाहर मुस्कुराता है पर कहीं ना कहीं वो बीवी से डरता ही है।
1: बिल्कुल ये बात तो सच
0: तो
1: में
0: मन ही मन मतलब वो मुस्कुराता रहता है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है।
1: बहुत सही फरमाया आपने। तो इसके अलावा जो आपने बहुत सारा काम है आपका, मैं कहाँ से गिनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, और श्रोताओं तक जो हमारे सुनने वाले जो रेडियो के श्रोता हैं उनको किस तरह पहुंचाऊं कि एक पूरा व्यक्तित्व जो है जिसको हम घंटे आधे घंटे के प्रोग्राम में समाहित नहीं कर सकते, उसका प्रयास हम जरूर कर सकते हैं और वो प्रयास ही कर रहे हैं। तो भाषा और बोली, इसके
0: जी
1: जो अंतर को आप किस तरह से देखती हैं और उसकी नजदीकियां और उसमें आपस में जो मेल होता है, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ी दूर 4 कोस में भाषा या 15 कोस में बदल जाती
0: जी
1: है,
0: जी बोला
1: तो
0: जाता हूँ।
1: हाँ वो बोला जाता है, तो वो चीज जो है उसको आप किस तरह से लेती हैं? क्या सच में उसका प्रभाव होता है? जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका, जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग बोलते हैं, जो मैदानों में रहते हैं वो कुछ अलग रहते हैं बोलते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: उसका जो आसपास की जो प्रकृति है उसका कोई असर हमारे शब्दों पे, हमारी भाषा पे, हमारे चिंतन पे होता है क्या? आप क्या सोचती हैं?
0: बिल्कुल। मेरे इस बारे में ये विचार है कि जैसा आपने कहा कि भाषा और बोली, तो भाषा और बोली में तो अंतर हो ही जाता है क्योंकि भाषा जो है वो अपने एक मानक स्वरूप में है, उसने अपना मानक स्वरूप चूंकि धारण कर लिया है इसीलिए वो भाषा है। उसका अपना व्याकरण है, उसके अपने कारक चिन्ह हैं,
1: जी
0: उसके अपने अलंकार हैं, उसके अपने रस छंद जो भी हैं, लेकिन बोली में वो सारी चीजें नहीं होती। बोली का कहा जाता है कि कोई व्याकरण नहीं होता, है ना, उसके कोई उसमें जो परंपराएं होती हैं वो मौखिक और वाचिक परंपराएं ही होती हैं, इसीलिए वो बोली है और इसीलिए अभी उसको मानक स्वरूप नहीं मिला है, इसीलिए उसको बोली कहा जाता है। पर हम यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मालवी बोली का जो साहित्य है वो काफी समृद्ध है, उसकी जो परंपराएं हैं मौखिक और वाचिक उसको लिखित रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास काफी समय से हो रहा है। कई जो विद्वान लोक साहित्यकार हैं वो काफी समय से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके जो मालवी लोक भाषा है उसका स्वरूप भी मतलब बोली का स्वरूप भी अब भाषा के रूप में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि मालवी में कई सारी पुस्तकें प्रचलित हो रही हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, एक अच्छी जानकारी मैं आपको प्रदान करती हूँ। राष्ट्रीय पुस्तक में आप भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसका एक अंग है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उसने अभी मालवी और निमाड़ी में बच्चों की पुस्तकों का अनुवाद करवाया है हम लोगों से। तो वो पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएंगी, छोटे बच्चे जो होते हैं। कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि हमारी जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें भी सरकार ने पुरजोर मतलब प्रयास किया है कि जो छोटे बच्चे हैं मतलब कक्षा एक से लेकर के पांचवीं तक के जो बच्चे हैं उनको हम अपनी मातृभाषा से जोड़ें, वो उसके बारे में जानें, उनके लिए छोटी छोटे बच्चों के लिए हम मालवी की कविताएं बनाएं और वो पुस्तकों में आए, उनको वो पढ़े, उसको वो सीखें, जानें। जैसे कि आप देखेंगे भाषाओं के साथ तो ये हो रहा है, जैसे मराठी भाषा हो गई, गुजराती हो गई, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चूंकि भाषा का मानक रूप इनको प्राप्त है तो ये तो काफी प्रचार प्रसार इनका होता ही रहता है, लेकिन मालवी और निमाड़ी तो ये अभी बोलियों के रूप में है, इनको अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हम मालवी निमाड़ी हमारी जो संघर्ष समिति है वो इसके लिए भी एक अभियान चला रही है और मालवी निमाड़ी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है और मालवी निमाड़ी अकादमी बनाने की एक मांग हम लोग कब से शासन से कर रहे हैं, उसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने चलाया है काफी विस्तृत, और हमारे यहाँ की जो संस्कृति मंत्री जी थी उनको भी ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि चूंकि मध्य प्रदेश का एक तिहाई क्षेत्र मालवा और निमाड़ को कवर करता है और इतना ही जनसंख्या का प्रतिशत भी लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो है ये मालवा निमाड़ में निवास करती है, लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या वहां रहती है और वो सभी मालवी निमाड़ी को बोलते हैं, तो क्यों ना इतने सारे लोगों की जो बोली है उसे भाषा बना दिया जाए और उसके नाम से एक मालवी निमाड़ी अकादमी का निर्माण हो जाए ताकि वहां पर इन बोलियों का भाषाओं के रूप में संरक्षण संवर्धन हो सके और एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय बनाना चाहिए जहाँ पे जितने भी पुराने जो लोग हैं वो और अभी जो मालवी का काम कर रहे हैं लिख रहे हैं उनकी पुस्तकें भी वहां पर उपलब्ध हो ताकि जो शोधार्थी हैं, अभी आप देखेंगे कि मालवी साहित्य में पीएचडी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अभी 100 से अधिक लोगों ने मतलब मालवी के विषय लेकर के और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, तो एक बड़ा क्षेत्र है मालवी का निमाड़ी का, तो इसको एक पुस्तकालय इसका तैयार करना चाहिए और इससे शोधार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि अभी तो वो भटकते रहते हैं, उन्हें कोई ऐसी उन्हें लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऐसे एक स्थापित
1: केंद्र
0: संस्थान नहीं है कि वो उनको उस बारे में जानकारी दे सके, तो वो दौड़ लगाते हैं फिर गूगल की ओर, गूगल पे फिर उन्हें जितना थोड़ा कम ज्यादा अच्छा सच्चा झूठा जैसा भी जो भी मिलता है तो वो उसी पर निर्भर रहते हैं। और हमारे यहाँ अभी मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है उसमें भी मालवी निमाड़ी को समाहित किया गया, यहाँ पर जो पूरे मध्य प्रदेश में 4 तरह की बोलियां चलती हैं, मालवी निमाड़ी बुंदेली और बघेली, तो इनके लोक साहित्य को उसमें समाहित किया गया है मध्य प्रदेश की लोक सेवाओं में, तो इससे भी निश्चित तौर पर इन बोलियों को बढ़ाने में इनके संवर्धन में सहायता मिलेगी, पर इन सब चीजों का साहित्य भी उनको उपलब्ध हो सके इसके भी हमें प्रयास करना चाहिए।
1: मालवी के बारे में आपने इतनी जानकारी दी और इतनी जानकारी आप के साथ समृद्ध हैं, आप मालवीय बोली और जो भी बोली या भाषा है उसमें लोकोक्तियां भी होती है, मुहावरे भी होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो जैसे जिसका राम धनी उसकी क्या कमी, ऐसे कुछ मालवी में कहा जाता है, तो कुछ लोकोक्तियों के बारे में आप बताएंगे।
0: हाँ, आप लोकोक्ति और मुहावरों की बात कर रहे हैं, आपने जो बोला वो लोकोक्ति ऐसी है कि जिका राम धरणी उके कई कमी
1: क्या
0: मतलब जिसका रखवाला भगवान हो उसको किस चीज की कमी, ये इसका अर्थ होता है। और बहुत अच्छा आपने ये विषय निकाला है लोकोक्ति और मुहावरे का, किसी भी भाषा को यदि हमें समृद्ध बनाना है तो उसमें लोकोक्ति और मुहावरों का एक विशेष योगदान होता है, और लोकोक्तियां वो होती है जो लोक अंचल में पुराने लोगों द्वारा कही जाती है और एक परंपरा उनकी चली आ रही है और वो एक वाचिक रूप में ही भाषा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित होती हुई चली आती है और कम शब्दों में उसमें हम अपनी बात को कह पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि टनक बनियानी टन को करे, घर को माटी रीसे बड़े, रीसे बड़े तो बलवा देने, मारो टन को चलवा दे। मतलब ये एक मालवी की लोकोक्ति है और जिसका अर्थ ये है कि टनक बनियानी टन को करे, घर को माटी रीसे बड़े। मतलब ये है कि हम अपना मनचाहा काम करते हैं, जो घर का हमारा मुखिया है चाहे वो हमें मना करे। रीसे बड़े मतलब गुस्सा होता है,
1: गुस्सा, अच्छा,
0: रीस आना मतलब गुस्सा आना, हाँ रीस का मतलब गुस्सा आना, ये मालवी का शब्द है। तो जो मनचाहा काम हम अपना करते रहे, चाहे कोई गुस्सा होता है तो होता रहे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ये अर्थ निकलता है। हाँ, और ऐसे ही एक ये है कि तेलन कमनी धोवन घाट, थारो मुंगरो म्हारी लात। मतलब जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों ही झगड़ालू है, मतलब तेलन जो है वो भी कमनी है और धोवन है वो भी तो उसका भैया
1: बहुत जबरदस्त जी,
0: दोनों ही पक्ष झगड़ालू है, कोई भी कम नहीं पड़ता है। इसको मालवी में बोलते हैं अदे बदे, अदे बदे मतलब कोई भी कम नहीं पड़ रहा है। जैसे दो पक्ष कोई झगड़ेंगे, हम किसी को समझा रहे हैं और कोई भी मानने को तैयार नहीं है, तो बोलते हैं कि ये तो दोनों अदे बदे हैं,
1: दोनों ही बराबर बराबर की टक्कर के हैं, यानी टक्कर।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की मालवी लोकोक्तियां लोकांचल में प्रचलित है बहुत सारी, और प्रयोग जब जब कहीं भी बोलने की बारी आती है तो जब हम इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं उससे ही सामने वाला जानकार आदमी है वो समझ जाता है कि लोक साहित्य की इनको कितनी समझ है और ये क्या मतलब करते रहते हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक मालवी लोकोक्ति है, जी को मांडवो बिगड़े उनको ब्याह बिगड़नो तय है।
1: अच्छा,
0: तो मांडवो, जैसे मांडवा जो एक शब्द है, हम शादी ब्याह में जब आरंभ होता है शादी ब्याह का तो एक मांडवा बनता है, मांडवा गाड़ा जाता है
1: जी।
0: तो यदि वो मतलब शादी का शुभारंभ होता है, मतलब श्री गणेश है, यदि वहां पर ही कोई गलती हो गई तो फिर आपका पूरा कार्य वो गलत ही होना है। तो इसके कहते हैं कि यदि शुरुआत ही आपकी गलत हो गई तो आपका पूरा काम ही गड़बड़ होना है। मतलब जी को मांडवो बिगड़ियो उको ब्याह बिगड़नो तय है,
1: यानी आरंभ का जो संकेत है वो मांडवा है। बहुत
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसी तरह से इस बोली में मुहावरे भी होंगे, तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के बारे में बताएं जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
0: मुहावरे भी प्रचलित है। अच्छा, लोकोक्ति और मुहावरे में बेसिकली अंतर ये है कि मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश होता है, मतलब हमको किसी वाक्य में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य होगा, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। आप लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से कहीं भी आप उसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मुहावरा है अड़ियल टट्टू होणो, तो अब इसको आप ऐसे किसी वाक्य में ही कि अरे राम तो अड़ियल टट्टू है ना, या उको नानो अड़ियल टट्टू है, तो हम इस तरीके से वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो अड़ियल टट्टू मतलब जो किसी भी काम को रुक रुक के करता है, मतलब अटक अटक के काम करता है, अड़ियल टट्टू टाइप, हाँ है ना, इस तरीके से। और बहुत सारे शब्द भी ऐसे प्रचलित है, जैसे लपक डेंडू, तो लपक डेंडू का अर्थ होता है अवसरवादी। तो देखिए कि पुराने लोगों ने कितने, हाँ, एक डेंडू एक सांप की तरह का एक प्राणी होता है, पानी का जीव होता है ये, और ये क्या करता है कि अपना मुंह खोल के उसमें पड़ा रहता है पानी में। जैसे ही कोई भी उड़ता हुआ मच्छर वच्छर या कोई भी आया कीट पतंगा, तो झट से ये उसको लपक लेता है, तो इसका नाम है लपक डेंडू। तो इसको उन्होंने अवसरवादी के रूप में की भी कैसा होता है कि वो अवसर के ताक में रहता है, हाँ, उसको मौका देना, उसने उस अवसर को झपट लिया। तो बड़ा मतलब अच्छा ये शब्द है लपेंडू, और मालवी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे करम खोल लो, तो करम खोल लो जिसके करने विधाता ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, ऐसा व्यक्ति उसको बोलते हैं करम खोल लो, हो गए। और एक बहुत अच्छा शब्द है घड़िया पाड़ना, या जिस हम या चितरना भी बोलते हैं। तो इसके साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, अभी आजकल तो वो एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं और काफी बड़े बड़े लोगों के हाथ वगैरह देखते हैं और उनको वो ज्योतिष का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, मतलब पुराने जो लोग रहते थे वो कैसे हिंदी में मालवी के शब्दों को कैसे समाहित कर लेते थे, उसका मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि वो उस वक्त तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे। मतलब मैं मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी और वो हमारे घर आए होंगे। तो हमारे जो पहले जो कुंडली पत्रिका जो होती थी वो पहले हाथ से बनाई जाती थी, अभी आजकल तो सब कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से बन जाती है। तो हम लोगों की जो कुंडलियां थी वो हाथ से बनी हुई थी। तो हमारे पिताजी ने बोला कि अरे घनश्याम आया है मेरा मित्र, इसको दिखाओ इनकी बच्चों की पत्रिकाएं, मतलब क्या है क्या नहीं है, इसमें राजयोग वगैरह है कि नहीं इसका, ऐसा वैसा। तो उनको तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, बोले कुछ मुझे से लिख के बताओ कॉपी पे। कब हम तो बच्चे ठहरे, तो हमको तो मस्ती मजाक सूझता है, ऐसे एकदम से कोई बोलेगा तो काम करने वाले रहते नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी ले जाके उसके ऊपर ऐसे ऐसे चित्र दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने ये घड़िये क्यों पाड़े, मतलब उन्होंने हिंदी हिंदी की टोन में वो घड़िये पाड़ने वाला मालवी का शब्द घुसाया बीच में। तो मेरे को, मैंने उसको पहली बार सुना ये शब्द, तो मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब मैं काफी देर तक हंसी, बच्चे तो थे और हंस के भाग गए, मतलब वो क्या कह रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। और ये भी ध्यान नहीं है कि भाई पिताजी के मित्र है तो बुरा ना मान जाए, या बच्चे जो ठहरे, बच्चों को कोई इन सब चीजों का वो नहीं रहता है। तो बाद में फिर अब जाके वो समझ में आता है कि ये घड़िया पाड़ना मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा जो भी हम चित्र दे रहे हैं कॉपी पे, उसके लिए मालवी का शब्द था। तो ऐसे बचपन में हमारा क्या संयुक्त परिवार था, हमारे जो बाद साहब थे वो हम सब बच्चों को बिठाते थे और गिनती वगैरह बुलवाना करवाना। तो अभी जब मालवी निमाड़ी का जब अनुवाद करवाया एनबीटी ने, तो उसमें एक शीर्षक आया था कि चंदा गिनती भूल गया। तो गिनती के लिए मैंने पराच शब्द का उसमें उपयोग किया। तो एक जो बहुत पुराने वहां पे बुजुर्ग साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुमको ये शब्द कैसे पता, ये तो बहुत पुराना मालवी का शब्द है। तो मैंने कहा कि ये शब्द हमको इसलिए पता है क्योंकि बचपन में हमारे बासाब हमको पराच बांचने के लिए बिठाते थे, मतलब गिनती बुलवाते थे और बोलते थे चलो बच्चों सब यहाँ बैठो पराज माचो। तो मुझे मालूम है कि गिनती को पराज बोलते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का ये कलेक्शन है और ऐसे ही मतलब मेरा मालवी शब्दकोश भी प्रकाशन में आया है। और इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे शब्द है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और मालवी शब्दों में तो वैसे भी मिठास है ही, जैसा कि आपने कहा, और मालवा की मिठास
1: बिल्कुल
0: आपने भी रसपान किया ही होगा। और जो
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, और आज तो हम रसपान नहीं, आज तो हम जो है वो मालवी की गंगा में नहा लिए हैं, ये समझ लिए हमने, स्नान कर लिया है और उसका स्वाद हमारे श्रोता भी ले रहे हैं। भोली बहन हेमलता हमारे साथ हैं, हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से, और बात कर रहे हैं हम प्रोग्राम आंचल की अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति का जो आंचल है उसमें क्या क्या लेके आई हैं, ये सच में जब हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो मालामाल हो गए होंगे, क्योंकि मालवीय और उस बोली की बात हो रही है। हेमलता, हम जिस युग में जी रहे हैं, एक संक्रमण का दौर है। आपने जैसा अभी उल्लेख किया कि वो एक जमाना था जब कुंडलियां हाथों में और भोजपत्र में बनी होती थी और कागज पे हुआ करती थी, हाथ से बनाई जाती थी। आज कंप्यूटर का युग है, तकनीक क्रांति इतनी आ गई है कि हम उसका शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते। उसका विस्फोट जो होगा वो जरूर हमारे सामने आएगा और हमारे बच्चों के सामने आएगा, तब उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, पर हो गया जरूर। तो वो होता जा रहा है, तो इस बदलाव को आप किस तरह से साहित्य में देखती हैं, क्योंकि इस इन सब चीजों को जैसे आप जैसे कुछ पुरोधा लोग हैं वो लिख रहे हैं, वो संयोजित कर रहे हैं, पर जो 2-30 सेकंड की रील है उसमें देख के, उतनी देखने तक की फुर्सत नहीं है, यानी हम में जितनी तकनीक को हमने विकसित कर लिया है उस तकनीक का उपभोग भी तो हमें करना चाहिए। तो जब हमें तो इन किताबों का, इन साहित्य का जो आप कर रही हैं, हम कर रहे हैं, उनका उपयोग कैसे होगा, उसका भविष्य क्या होगा? साहित्य का भविष्य, भाषा का भविष्य, बोली का भविष्य, लोक संस्कृति का भविष्य, इन सब पे जब सोचते हैं तो कई बार चिंता लगती है, चिंता का विषय बनता है। तो क्या हम इससे उबर पाएंगे? आप एक चिंतक हैं, साहित्यकार हैं, लिखती हैं, तो क्या सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? इस संस्कृति को बचाने में लगे हैं, आप जैसे, हमारे जैसे लोग तो इसको बचाने के लगे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इससे कोई सरोकार नहीं है, तो क्या होगा इसका भविष्य? क्या सोचती हैं आप इस विषय में?
0: बहुत अच्छा आपने ये विषय उठाया है, और केवल अभी ही नहीं, किसी भी लोक भाषा के लिए ये प्रश्न बड़ा महत्व का साबित हो सकता है। और वाकई में उस बोली या लोक भाषा के चिंतकों को, साहित्यकारों को, लोक साहित्यकार जो है, इस विषय पर अवश्य चिंतन करना चाहिए कि भाई हमारी जो लोक बोली है, लोक भाषा है, उसका वर्तमान संदर्भ क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कितनी प्रासंगिक है, और आगे जाकर के उसका भविष्य कैसा होगा। क्या वो वाकई में विलुप्त हो जाएगी या वो बची रहेगी? हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या अपनी जो नई पीढ़ी है उसको ये सारी चीजें जो की त्यों हस्तांतरित कर पाएंगे, और इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने होंगे, ये इसीलिए चिंतन का विषय बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर यहाँ मेरा वही कहना है कि मैं बात करती हूँ मालवी की। तो मन में प्यार ने भोजन में मनवार होए, नेह आशीष ने माँ तरी को दुलार होए, मालवा की मालवी की मिठास ऐसी है कि पल में मनक बोलने वास्ते तैयार हो। तो आप किसी से भी मालवी में यदि एक शब्द भी आप बात करते हैं तो वो आप बड़े सरल सहज, क्योंकि मालवी बड़ी मीठी भाषा है, तो एक आकर्षण जो है वो ये लोगों में पैदा करती है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी पिछले में विगत आप 5 वर्षों पहले की यदि हम बात करें कोरोना काल के समय से, तो उस वक्त तक मालवी का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कोरोना काल में एक कहना चाहिए कि क्रांतिकारी जैसे परिवर्तन, क्योंकि लोग थोड़े से फ्री थे और हमने भी उस समय बहुत ज्यादा गति पकड़ी, क्योंकि हमें भी वर्क फ्रॉम होम करने की छूट मिली हुई थी और घरों में कैद थे, लॉकडाउन था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वो समय का हमने काफी उपयोग किया और लोगों को जोड़ने के लिए हमने मालवी में छोटी छोटी जो मूवीज होती हैं, शॉर्ट मूवीज, तो वो हमने बनाई, सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रचारित प्रसारित किया। उसके कारण लोगों में एक आकर्षण, क्योंकि मूवी और सिनेमा ये शब्द ऐसे हैं कि आज भी इनका लोगों को क्रेज है। आप किसी को कह दो कि आपको टीवी पर आना है या आपको आकाशवाणी पर आपका कविता रिकॉर्ड होगी, तो उनको बड़ा क्रेज है आज भी।
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को आकर्षित करती है। तो हमने उस समय करीब 35-40 हमने छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बना के हमने उस वक्त डाली थी, तो उसका बड़ा फायदा एक ये हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे मतलब मूवी में आना है करके, तो इस तरीके से वो बच्चे सक्रिय हो गए। और अभी आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे भी कई लोग, मतलब सुपरस्टार जिसको कहते हैं, मालवी के छोटे छोटे बच्चे मालवा के सुपरस्टार टाइप बने हुए, उन्हें भाषा बोली से मतलब नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम भाषा को बढ़ा रहे हैं या हम हमारे क्षेत्र की बोली के लिए काम कर रहे हैं। उनको जो है वो एक नेम और फेम कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, उस तरीके से। तो इस रूप में मैं देखती हूँ कि मालवी बोली का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि ऐसे बच्चों के अभी भी आप देखेंगे लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कहीं भी मैं ये नहीं मानती, और वो बच्चे भी यदि मालवी में कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो उसके माध्यम से बोली का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार संवर्धन तो हो ही रहा है, संरक्षण भी हो रहा है।
1: बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात और बहुत तो अच्छा सुझाव आपने
0: तो
1: दिया।
0: ही रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ,
0: लेकिन अब उसको ये है कि एक साहित्यबद्ध रूप में भी होना चाहिए, तो उसके लिए जो प्रयास है वो साहित्यकारों को, चिंतकों को और स्थानीय स्तर के जो है
1: दिशा देने की जरूरत है,
0: लोग उनको एक दिशा, शासन को जरूर उसमें सहयोग करना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत जो प्रयास होते हैं वो सीमित होते हैं, उनकी एक सीमा होती है, और कोई भी व्यक्ति निरंतर कोई भी कार्य को जारी रखने में अक्षम सिद्ध होता है, क्योंकि हर चीज के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: हम जो है वो एक बड़ा कार्य है, किसी भी लोक बोली भाषा को बचाना, संरक्षण संवर्धन करना एक बड़ा कार्य है। कोई एक व्यक्ति, जिसको कहते हैं अकेला नहीं छोड़ सकता,
1: बिल्कुल,
0: तो एक व्यक्ति इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, इसके लिए जो कह रहा है कि लोक स्तर पे लोगों को आगे आना होगा, प्लस शासन को भी इसमें कुछ योगदान, कुछ अपना सहयोग, कुछ मदद ऐसी देनी होगी, और एक दिशा निर्देश कुछ ऐसा करना होगा। और मुझे थोड़ा प्रसन्नता भी होती है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि जो अपनी शिक्षा नीति है उसमें लोक भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो अब धीरे धीरे करके जो है बोली से जोड़ने के लिए, बच्चों को भी जोड़ने के लिए और सारे प्रयास हो रहे हैं। अब इस पर शोध भी हो रहे हैं मालवी को लेके। अभी आज ही मेरे पास एक कॉल था मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मतलब आवश्यकता है हमको, तो आप अनुमति प्रदान करें, तो एक अच्छी चीज है। अब यूनिवर्सिटीज में
1: बिल्कुल
0: लोक बोली लोक भाषा के लिए अलग से एक संभाग बनाया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है, शोधार्थियों को अब वहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना ही चाहिए और हो रही है, और धीरे धीरे मालवी इससे निश्चित तौर पर बढ़ेगी और मालवी लोक भाषा का भविष्य उज्जवल है। पहले अभी तो पहले आप गूगल पे सर्च करते थे तो कुछ एक चीजें नजर आती थी, अब आज आप यदि उस पर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालवी का बहुत सारा साहित्य और बहुत सारी चीजें, आपको वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं और लोकगीत हैं इस तरीके से। और मालवा में एक लोकगीत के साथ साथ लोकनाट्य और एक निर्गुणी गायन भी यहाँ पर प्रचलित है, भर्तरी गायन की परंपरा चलती है उज्जैन में, और कबीर गायन यहाँ पे काफी प्रचलित है। एक हमारे कबीर गायन करने वाले जो हमारे प्रहलाद टिपाणिया दादा हैं, उनको तो पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। तो ऐसे जो सम्मान और ये प्रयास, यही शासन का योगदान होता है कि कम से कम काम करने वाले लोगों को शासन सम्मानित करता है। अभी भी इस बार भी साहित्य अकादमी के जो कार्य घोषित हुए हैं उसमें मालवा के काफी सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया है, तो इससे लोगों का रुझान इस ओर बढ़ेगा और ये एक बहुत अच्छा साहित्य अकादमी का मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश किया है। इसके लिए आपके निदेशक को भी साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, शासन को साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, और निश्चित तौर पे मालवी का भविष्य उज्जवल है। और अच्छा, मालवी में ऐसा है कि कहीं भी आप कोई सी भी चीज बढ़िया से उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, लोग उसको सुनता है। और मालवी ऐसे मराठी या सिंधी या वैसी नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगी, हिंदी से मिलती जुलती है, तो आप जैसे कुछ भी बोलते हो तो वो आपको एक उसका भाव तो समझ में आ ही जाता है, मतलब जैसे पूरा आपको
1: पूरी तरह ना आए समझ में आए, भाव बोध हो जाता है।
0: हाँ, जैसे मैं आपको मालवी की चार लाइन में जैसे आपको सुनाऊं कि त्रिपुरा को पावन घाट जहाँ पे माँ हर सिद्धि को वास है, त्रिपुरा को पावन घाट जहाँ पे माँ हर सिद्धि को वास है, जा विराजा महाकाल राजा उन्हीं उज्जैनी की बात, तम नहीं समझोगा।
1: वाह, समझ में आ गया, बहुत समझ गया। तम नहीं
0: समझोगा वाली, हाँ, ये एक टेक लगा के और कि उसमें क्या रस है, क्या आनंद है, क्या है, बात है,
1: समझ गए। जहाँ महाकाल विराजता है उसको हम क्या समझेंगे,
0: बिल्कुल
1: नहीं समझ सकते,
0: बिल्कुल
1: वो तो विराट है। और तो भोली बहन यानी हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस प्रोग्राम में रही, इस प्रोग्राम का नाम तो आप जानते ही हैं, अभिव्यक्ति का आंचल। और
0: जी
1: इस प्रोग्राम में भोली बहन जिसको कहते हैं हेमलता शर्मा हमारे साथ रही और मालवीय साहित्य और हिंदी साहित्य पर अपना प्रकाश डाला शब्दों का, उसके लिए हम बहुत विनम्र रूप से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली और एक अच्छी साहित्यकार जयपुर रेडियो वर्ल्ड से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि हम बार बार भोली बहन से आपकी बात करवाते रहेंगे। आज
0: मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक मिनट का समय मैं आपसे और लेना चाहूंगी।
1: जी जरूर।
0: आज क्योंकि जयपुर रेडियो है और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ मालवी दोहे में महाराणा प्रताप जी के लिए भी कहना चाहूंगी, ताकि राजस्थान की आनबान शान और चित्तौड़ और मेवाड़ की भी आनबान शान के लिए भी कुछ बात हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मालवों में

प्रताप है नाम, जो अपनी मिट्टी की खातिर मर गए, जिन्होंने अपने प्राणदान दे दिए, ऐसा महाराणा प्रताप उनका नाम है। और देखो किसके आगे वो नहीं झुके, अकबर।

0: मालवों में वाड़ गूंजे राणा जी को गान। तो ये कुछ दोहे मैंने महाराणा प्रताप पर भी आज लिखे थे,
1: बहुत
0: उनको
1: अनुपम
0: जयंती पर
1: शौर्य का
0: उनको सादर
1: प्रतीक,
0: नमन करते हुए। जी
1: बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत आभार आपका कि आपने राजस्थान पे और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व पर अपने शब्दों से प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत आभार,
0: जी
1: बहुत
0: भारत
1: शुक्रिया।
0: का गौरव है हमारे। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का गौरव और भारत का गौरव और
0: बिल्कुल
1: दुनिया का
0: बिल्कुल
1: गौरव है महाराणा प्रताप।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: महाराणा है उसको आपने अपने शब्दों से चित्रित किया है, आज के दिन विशेष रूप से उसके लिए आपको धन्यवाद, आभार और प्रणाम,
0: जी
1: सल्यूट है आपको, आपकी सोच को, आपके चिंतन को, कि आपने इतनी अच्छी विचार धारा को अपने शब्दों से प्रवाहित किया, उसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हेमलता शर्मा भोली बहन, और भोली बहन है तो सब कुछ संभव है, भोली बहन सब कर लेती हैं, तो आगे भी हम आपके साथ यूं ही गाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आज इस प्रोग्राम
0: जी
1: को यहीं विराम देते हैं, बहुत
0: जी बहुत
1: प्रणाम।
0: बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।

हैप्पी बर्थडे टू यू। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जो है वो रेडियो वर्ल्ड है और ये स्पेशल प्रोग्राम साक्षी मेंढेकर नागपुर महाराष्ट्र से

जयपुर रेडियो की सिंगर आज इस मंच पर, और आज इस मंच पर इसलिए कि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है जयपुर रेडियो की ओर से, और आपके तमाम लिसनर्स और फ्रेंड्स की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम सुनेंगे साक्षी के सुरीले गीतों का ये झिलमिलाता प्रोग्राम। और हर बार और बार बार आज तो सेलिब्रेशन चल रहा है तो यही कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला गीत साक्षी मेंढेकर का, नागपुर महाराष्ट्र से, इस मंच की सुरीली सिंगर

और छोटी सी गुड़िया आज जयपुर रेडियो मंच पर, जिसका नाम है साक्षी मेंढेकर, और छोटी सी से बन गई है ये बड़ी सी सिंगर।

छोटी सी गुड़िया के लिए कितना प्यारा सा गीत, और वही गीत गाया इसी छोटी सी गुड़िया ने जो सिंगर हो गई। नाम है साक्षी मेंढकर, नागपुर महाराष्ट्र से, और हमारे जयपुर रेडियो के इस मंच की सुरीली सिंगर आप जानते हैं और आप सुनते हैं इसी सिंगर को, और इसी का है आज हैप्पी वाला बर्थडे। बहुत मुबारकें जयपुर रेडियो की ओर से।

जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और दो पलों में हमारे साथ साक्षी मेंढकर, आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो का ये सुरीला मंच। क्या कहते हैं आप? आप भी यही कहते होंगे, साक्षी हैप्पी बर्थडे। तो हम बोल देते हैं आपको आपकी ओर से।

साक्षी मेंढकर के बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी चल रही है, आपने कुछ पिया कि नहीं पिया? और नहीं पिया तो क्या कहता है आपका जिया?

आपकी कसम। बहुत ही खूबसूरत सुरीला गीत हमारी आज की सिंगर मेहमान सेलिब्रिटी साक्षी मेंढेकर।

ले गई दिल और ख्वाबों में आने का कह गई। साक्षी का अगला गीत यही कह रहा है शायद।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर साक्षी मेंढेकर नागपुर महाराष्ट्र से। इस मंच की आज की सुरीली मेहमान और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका ही हैप्पी वाला बर्थडे इस सुहाने मौसम।

जाने किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना, और अफसाना तो बनना ही है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साक्षी का हैप्पी वाला बर्थडे। और हमारे लिसनर्स भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। हैप्पी बर्थडे के साथ आपके गीतों के लिए क्या कह रहे हैं आपकी आवाज में ही।

तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, और ये निशानी गीतों की निशानी है और हमने आपकी आवाज से पहचानी है। डिजिटल वॉइस वर्ड के जयपुर रेडियो वर्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बर्थडे सेलिब्रेशन, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। साक्षी मेंढकर नागपुर महाराष्ट्र से हमारे संग हमारे साथ। आज की सुरीली गायक

मेरा दिल ये पुकारे आजा। और साक्षी ने कहा पुकारे आजा, है ना। यानी उसी गीत को अपने अंदाज में गा के अपना बना लिया। इसी को कहते हैं सिंगिंग। और सिंगिंग का ये कमाल आज इस मंच पर दिखा रही हैं। हैप्पी बर्थडे बेबी साक्षी मेंढेकर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच सेलिब्रेट कर रहा है नागपुर महाराष्ट्र की जयपुर रेडियो की सिंगर साक्षी मेंढेकर का जन्मदिन। बहुत शुभकामनाएं जयपुर रेडियो की ओर से।

और हम श्रोताओं से कहेंगे बोलो ना कैसे लगे आपको साक्षी के गीत। आपको अपने हर एक गीत में मनाया है, लुभाया है और गीत सुनाया है साक्षी मेंढेकर ने, जिसका बर्थडे हम मना रहे हैं इस मंच पर। और हम तो यही कहेंगे रजनीगंधा के फूलों का एक गुलदस्ता गीतों में महक जाए और सब लोग यूं ही आज के दिन बहक जाए। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये सुरीला मंच, साक्षी मेंढेकर आज की सिंगर।

बहुत ही खूबसूरत गीतों की ये दास्तां हमने सुनी साक्षी मेंढेकर की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, बहुत शुभकामनाएं। और जयपुर रेडियो की ओर से ये सुरीला सॉन्ग आपके नाम। आपकी आवाज, आपकी पहचान, साक्षी मेंढेकर की आवाज। आज की हैप्पी बर्थडे गर्ल।

बर्थडे बेबी साक्षी मेंढेकर। नागपुर महाराष्ट्र से।

और अभी अभी जो शुभकामनाओं के संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनके नाम हम लेना चाहेंगे। मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, राजू शर्मा महाराष्ट्र से, गासीराव जगह का नाम नहीं लिखा है, पल्लवी आचार्य अहमदाबाद गुजरात से, श्यामा जैन चेन्नई से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, अनीता डूगर नेपाल से, अतुल सक्सेना हैदराबाद से, रिंकू महरूत्रा कानपुर से, मेहा वालिया दिल्ली से, सखी जगह का नाम नहीं लिखा, दीपचंद जयपुर से, विपिन दोषी जगह का नाम नहीं लिखा है, सुब्रह भट्टाचार्य आमिर राजस्थान से, और हीना मनीष मेहता अहमदाबाद गुजरात से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, और बार बार हम कहेंगे आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की। जयपुर रेडियो की ओर से साक्षी बहुत स्नेह आशीर्वाद, गाते रहें और यूं ही जयपुर रेडियो पर आते रहें। हमारे दिल की आवाज और आपके दिल की आवाज, और दोनों दिलों की आवाज लेके आ गई हैं सोलन हिमाचल से सपना चौहान। आइए सुनते हैं।

इश्क मासूम है इल्जाम लगाने पर न जा, दिल की आवाज भी सुन। और ये आवाज आपने सुनी सपना चौहान की, जयपुर रेडियो की सुपर डुपर सिंगर, आपकी आवाज आपकी पहचान के इस मंच पर आती है और गजब ढाती है। वक्त ऐसा भी आता है कभी, राह में साया भी कभी दूर चला जाता है। और अपने साए को पहचानिए, क्योंकि जयपुर रेडियो आपकी आवाज का साया है, आपकी आवाज आपकी पहचान। इस मंच की हमारी

आज की सुरीली मेहमान सपना चौहान सोलन हिमाचल से। आइए सुनते हैं सपना का ये अगला गीत अपना।

आप सुन रहे हैं सुरीली सपना को सोलन हिमाचल से, आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आज इस मंच की मेहमान सपना चौहान।

बिल्कुल ये वादा रहा, क्योंकि आप जयपुर रेडियो पर हैं और इतने सालों से हमारे वादे के मुताबिक आप मिलती हैं और श्रोताओं का अपने गीतों से मनोरंजन करती हैं। आज की मेहमान सिंगर सपना चौहान, सोलन हिमाचल से। आपकी आवाज आपकी पहचान, जानी पहचानी आवाज, सपनों के गीत लाने वाली आवाज। आपकी आवाज को जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स जानते हैं, पहचानते हैं। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आपकी आवाज, आपकी पहचान। और आज की आवाज सपना चौहान।

ये खूबसूरत शानदार गीत आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आज की मेहमान हमारी प्रोग्राम दिल की आवाज में सपना चौहान सोलन हिमाचल से।

और आपको किसका इंतजार है हमें ना मालूम, आप बताएंगे तभी मालूम होगा। आपने सुना प्रोग्राम, आज के कलाकार प्रोग्राम में दिल की आवाज, और ये आवाज लेके आई थी सपना चौहान सोलन हिमाचल से। कैसा लगा आपको सपना का आज का ये शो, हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और सपना की आवाज भी। अनुमति दें, नमस्कार।

0: और अब प्रस्तुत है युगल गीतमाला।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम युगल गीतमाला और युगल गीतमाला में आज युगल स्वर है जगदीश अरोड़ा पंजाब से और पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ सुप्रिया पेटकर। आप दोनों का वेलकम है, खैर मकदम है, अभिनंदन है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम और खास दिन के आज के शो में। जी हाँ, टॉप जोड़ी वैलेंटाइन डे स्पेशल क्या कहें, आपको सुनने को मिलेंगे आज खूबसूरत गीत कि ये माला आपके नाम यानी हमारे लिस्नर्स के नाम। आपकी आवाज आपकी पहचान, मंडी गोविंदगढ़ के जगदीश अरोड़ा, पुणे महाराष्ट्र से सुप्रिया पेटकर।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युगल गीतमाला का आज का स्पेशल शो। और आज हमारे साथ हैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब, और आपका साथ दे रही हैं पुणे महाराष्ट्र की सुप्रिया पेटकर। खूबसूरत दो गाने आपकी आवाज में आपके पहचाने जाने आपके सिंगर

हमारे लिसनर सुन रहे हैं जयपुर रेडियो और हम कहेंगे वी आर जयपुर। आप सुन रहे हैं युगल की तुम्हारा और इसमें आज खूबसूरत युगल गीतों के साथ हमारे साथ हैं सुप्रिया पेटकर और जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जिंदगी में प्यार के दो बोल, और ये दो बोल बोल रहे हैं हमारे आज के दो सिंगर जगदीश अरोड़ा और सुप्रिया पेटकर। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम युगल गीत माला, और इस माला की खुशबू आप तक पहुंच रही है। हमारे दोनों सिंगर की

हमारे साथी जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से और आपका साथ दे रही हैं, सुप्रिया पेटकर महाराष्ट्र पुणे से, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के खूबसूरत प्रोग्राम युगल गीत माला में हमारे साथ

0: युगल गीत माला सुन रहे थे आप। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: कब होगा मिलन ये अपना?
2: अरे मुझे क्या पता,

0: अरे ये लाहौर इलाकों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू काम में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर गया वहाँ?
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: तवा बुधिराय आयो जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।

जयपुर रेडियो के श्रोता सुन रहे थे गीता का 11वां अध्याय परमा एकादशी के उपलक्ष्य में। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुने एकादशी भजन।

0: जीवन की अविरल धारा में बहुत से लम्हों को जीते हैं हम, जिनमें से कुछ खास लम्हे हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही पलों को जीवंत करने की कोशिश, बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए मेरे साथ हैं ओपी शर्मा। भगवत गीता में कहा गया है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। तो आज बातें योग की, उस खास योगिनी से जो योग को जीती हैं। दिव्य धारा सरस्वती आचार्य योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा, योगा मेडिटेशन कोच, स्पिरिचुअल कोच, प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट एंड को डायरेक्टर ऑफ योगा स्थली योगा सोसाइटी। नमस्कार डॉक्टर हेमलता शर्मा।
1: नमस्कार सुषमा जी।
0: आपसे मिलते ही आपकी प्यारी सी मुस्कान हमें पॉजिटिव वाइब्स भर देती है। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या राज है इसका, इस मुस्कान का।
1: देखिए सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग कॉम्प्लीमेंट। और मैं ये मुस्कुराहट अपने आप ही आती है जब आप हर पल को प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर केवल प्रेजेंट में आप जीने का आनंद लेते हैं वर्तमान में, तो अपने आप ही आपको 100% आप अपना क्वालिटी देते हैं। तो आप आनंद ही आनंद, हर पल आनंद, और वास्तव में आनंद समाया है, बस देखने की जरूरत है कि हर पल आनंद कहाँ है,
0: महसूस करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपको देखकर, आपके साथ रहकर हम ये महसूस कर पाते हैं। तो कब आपकी जीवन यात्रा में योग शामिल हुआ?
1: देखिए, योग शायद उस समय हमें ये नहीं पता था कि योग है। वैसे बचपन से ही हम बड़े आध्यात्मिक वातावरण के अंदर पले बड़े हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ से हमारा एजुकेशन हुआ है, तो वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ रहना, यज्ञ करना, ये हमारी उसमें था, एजुकेशन में था। और उसके बाद में हम परिवार का माहौल ऐसा था, और जैसे ही फिर हमारा विवाह हुआ, शादी हुई, उसके बाद में हाँ, दो बच्चे होने के बाद में हमारा जो जर्नी है, उससे पहले हम आईटी अचौड़ी थे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। और फिर जो 2010 के अंदर हमें मौका मिला योग कक्षाओं को ज्वाइन करने का, और हमने योग कक्षा को जब ज्वाइन करा तो हमें लगा कि ये चीज है जो वास्तव में आप अपने आप के लिए जीते हो और एक बहुत ही लीगल कार्य आप करते हो, तो हमें अच्छा लगा अपने आप में। उस वहां से एक मोटिवेशन मिला हमें कि हेमलता, आप इसके लिए बने हो, अब योग के लिए बने। तो बस वहीं से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट करा और फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखा।
0: एक गृहिणी, एक माँ के रूप में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने योगाचार्य की भूमिका को ग्रहण किया। बड़ा मुश्किल रहा होगा ये काम, तो कैसे ये भूमिका आपने अपनाई, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया?
1: देखिए, जहां तक आपने कहा कि मुश्किल रहा, तो मुश्किल तो होता है। भारतीय अपनी गृहिणी के लिए बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को निभाना, फिर खुद के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, रास्ते हमने पूरा जुनून था हमारे अंदर कि हमें कुछ कर दिखाना है। और उस समय हम जब बहुत ध्यान उच्च अवस्था में होते थे, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर, हमें जयपुर की बहुत अच्छी, केवल जयपुर के लिए मांगते थे कि हम बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर बने। और धीरे धीरे धीरे धीरे इस सब, जैसे योग जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता गया, योग को हम समझते गए, और हर स्टेप हमारा योग में होता गया, तो अपने आप हमारी क्वालिटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ गई, मैनेजमेंट क्वालिटी हमारी बढ़ गई। तो घर गृहस्थी को संभालते हुए बड़े अच्छे से हम योग के पथ पर चल पड़े और अच्छा स्मूथली हम इसको कार्य करते रहे। और साथ
0: क्या
1: में,
0: जी क्या बताना चाहेंगे, किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, आई कैन अंडरस्टैंड।
1: 100% श्योर। तो फैमिली सपोर्ट, यानी मेरे हस्बैंड जो हैं, वो 2007 में ही, उमेश शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं योगास्ली योगा सोसाइटी के, उन्होंने योगास्ली योगा सोसाइटी खोला, और 2010 में हमें सुअवसर मिला ज्वाइन करने का। तो उनका सपोर्ट तो देखिए, पति देव का सपोर्ट तो श्योर मिला हमें 100%। उसके साथ में हमारे साथ एक मोटिवेशन भी रहा, हमारी गुरु का भी मोटिवेशन हमारे साथ रहा। जैसे उमेश शर्मा जी एक गुरु के रूप में भी हमारे साथ रहे, उनसे हमने सीखा योग क्या है, कैसे हैं। और उसके साथ में पंडित राधेश्याम मिश्रा जी उज्जैन से, उनका भी बड़ा मोटिवेशन रहा। उन्होंने कहा कि हेमलता, आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। और फिर हमने धीरे धीरे धीरे धीरे ये सारा सहयोग परिवार का जब रहा तो हाँ, अपने आप ही एक अपने लिए रास्ता बनता है, परेशानियां परेशानियां आपको नहीं लगती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो आगे बढ़ते जाते हो, और हौसला आपका और जज्बा आपका जो जुनून है वो खुलकर आपका बाहर आता है। और इसी तरह से हम अपने पति देव के मोटिवेशन से, वो हमारे गुरु भी हैं, उनके मोटिवेशन से और राधेश्याम जी के मोटिवेशन से हम लगातार आगे बढ़ते गए।
0: जी हिमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसे कि यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
1: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक है, आपकी होलिस्टिक हेल्थ है, आपके संपूर्ण यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये, साइंस है अपनी भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है। यानी आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बार के लिए पूरा, आप अगर 1 घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी वो ऊर्जा आ जाती है। तो अपने योग अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर किया, जब योग लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है। और जब आत्मबल आपको आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग हमने पूरे विश्व में योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ध यानी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
0: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम्, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवद गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
1: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम् मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे, और देंगे जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहें। तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति, जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होके उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%। श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली फिजिकली इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। और सुषमा जी हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
0: बिल्कुल
1: है ना। बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं, बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है। यानी माइंड कुछ और कर रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी। तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करने शुरू, यानी योग जो है वो एक्शन में, परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो, आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा बनाओ।
0: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
1: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट, आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो, आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं, आप करिए, बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टर होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है। बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा, तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया, तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, जब आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी। और यही कारण है स्माइल करने का, हम जो कार्य करते हैं हमेशा विविध प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेकिन अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप ही आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही है एक तरीका,
0: बिल्कुल। योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह के इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
1: जी जी एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगे कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन है जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया, और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं, और साथ में योग जब आप करते तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली तो बहुत बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो वो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, और नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ रहे गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भिणी के रूप गर्भिणी गर्भवती महिला के अंदर जो फियर होता है और डर होता है वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इंप्रूव हुआ, और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास, हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्भ के अंदर ही उनको पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना, तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है। बच्चे से संवाद करना यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है क्या पीना है ये उनको बताया जाता है। मंत्रों को बड़ा महत्व, मंत्रों के अंदर बड़ी ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी मंत्र सुने कि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे
0: जी,
1: थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला ऐसे। और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि तो इतना पहले जैसा लाइफस्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी, कार्य करने का हमारी बड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासनों में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है। तो ये बड़ा करना है
0: जी। आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है?
1: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया सुषमा जी। आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा, सब जने आजकल तो आप बड़े बड़े कंपनीज में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं है, स्कूल्स में देख लीजिए, क्योंकि योग क्या करता है इसके महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है कार्य। तो ये धीरे धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ गई, तो योग

0: मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं, और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर जब पढ़ते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली, तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ
1: बिल्कुल
0: युवा इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा। आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जैसे ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है।
1: जी। अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शियलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
0: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना। कमर्शियलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो, और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप पब्लिसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता हर एक व्यक्ति दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए। बट हमारा ये बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत करो। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं, और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा।
1: जी
0: समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है, और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है।
1: जी
0: इसलिए एक योग, अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें, अच्छे से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले वन ऑन वन करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है, और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया। तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
0: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात कर रहे हैं, और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक
1: अच्छा
0: उसको रूप दे दिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित, और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग में आपने जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो, तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ। हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ

0: आप वो चीज को असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाए, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाए। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माउथ पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है आपको, आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती है बड़े आनंद भाव से लेती है, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद, हमें वर्कशॉप्स लेने में आनंद आता है, सेमिनार करवा लीजिए, योग के लिए तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में।
1: जी तो बिल्कुल, आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
0: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं, इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा विन्यासा फ्लो है, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी है। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65+ वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते हैं ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया अपने आप में, वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग को, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी, योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, अच्छा लगता है।
1: आपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज, आयु वर्ग के हिसाब से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यासा फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60+ वाले, 65+ वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी हैं, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है, मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में।
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 तारीख को ही, 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के ऊपर स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही है, डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप, और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है, और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, हर एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका बहुत अच्छा। तो ये बहुत
1: बिल्कुल हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसने जिसके यूं माने कि हमने कहीं इधर उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा और अब तो हर व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब, ये बदलाव कैसे आया, कौन सा वो वक्त था, या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए?
0: एक्चुअली क्या है कि योग इज ए होलिस्टिक है, आपकी होलिस्टिक हेल्थ है आपके संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है ये, साइंस है अपनी भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम आप मान लीजिए बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया, और बड़े हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग हमारी धरोहर रही है। यानी अब आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया, और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि जिस चीज के लिए वो योग को कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं, मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना, और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बार के लिए पूरा आप अगर एक घंटा भी आप योग कर लेते हो तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है। तो अपने योग अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर किया, जब योग लोगों ने योग को अपनाया तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, योग करने से फिजिकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसे नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपको स्टेमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है। और जब आत्मबल आपको आगे बढ़ता है तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है। और इसी वजह से योग सबने पूरे विश्व में योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ध यानी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी मोटी जैसे परेशानियां स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है, और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं, इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है।
1: वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम्, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवद गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं?
0: देखिए, योगः कर्मसु कौशलम मतलब एक्शन विद परफेक्शन, और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे, और देंगे जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहेंगे। तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान, तो वो कैसे करेगा व्यक्ति, जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा, और जब 100% फोकस होके उस कार्य को करेगा तो वास्तव में उसका रिजल्ट आएगा 100%, श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी योग आपको ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली फिजिकली इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। बस सुषमा जी हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे
1: बिल्कुल.
0: अंदर है ना, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं। आप बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है, यानी माइंड कुछ और कर रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो अपनी कुशलता कहाँ से आएगी? तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंच कोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं, और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करने शुरू, यानी योग जो है वो एक्शन में, परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में उसको परफेक्शन के साथ करो, आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा बनाओ।
1: तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत?
0: देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट, आप एवन आर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो, आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा सा खोल लो, और उसके बाद में आप उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत एक दो आसन आप कर सकते हैं, आप करिए, बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए। और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज, बाहर सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टअप होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है, बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा? तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके, प्राण में कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनो में कोश पे काम कर लिया, तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, जब आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे, जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी रहेगी, और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा बी विथ प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेकिन अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, और फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप ही आप आनंद की अनुभूति करते हैं, और यही है एक तरीका।
1: बिल्कुल, योग की तरफ नजर जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह के इनोवेशंस इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं?
0: जी, एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगे कि किस तरह से योग करने से, केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे धीरे जो लोगों को बीमारियां थी उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फर्क पड़ा, उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क फर्क पड़ा है। तो धीरे धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन है जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं, यानी उनके अगर डायबिटीज वाला आया तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन है उसको करवाए जाते हैं, थायराइड वाला आया तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं। और साथ में योग जब आप करते हैं तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली तो बहुत बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फील करेंगे। और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है तो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे आ रहे गए। और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाया, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भवती महिला के अंदर जो फियर होता है और डर होता है वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इम्प्रूव हुआ। और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, इसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास, हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्भ के अंदर ही पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना, तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं। इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है, बच्चे से संवाद करना यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है, उनको क्या खाना है क्या पीना है ये उनको बताया जाता है। मंत्रों का बड़ा महत्व, मंत्रों की बड़ी ऊर्जा है, तो गर्भवती महिलाओं को कौन से मंत्र सुने कि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी, तो इसमें बड़ा फायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए, योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे
1: जी,
0: तो थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाती, तो वहां पे भी उनको बड़ा फायदा मिला। तो ऐसे और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सीजेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा सा, क्योंकि तो इतना पहले जैसा लाइफस्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी, कार्य करने का हमारी बड़ी सेडेंटरी स्टाइल हो गई है, तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासनों में ढालती है, काम करती है और अपने बॉडी पे काम करती है, स्ट्रेचिंग करती है, तो धीरे धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और तो फिर वो दिन भर अच्छा फील करती है। और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं ना कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है उसमें बड़ी मदद करती है। तो ये बड़ा करना है
1: जी। आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेस इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है, कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर किसी को ये अपनाना है?
0: बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया सुषमा जी। आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा, सब जने आजकल तो आप बड़े बड़े कंपनीज में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं, स्कूल्स में देख लीजिए, क्योंकि योग क्या करता है इसके महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है कार्य। तो ये धीरे धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ गई। तो योग वो ऐसे नहीं कि केवल आसन कर लिया और आप बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टेमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएंगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो योग करने से धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का YCB जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, हम इंडियन योगा एसोसिएशन से, हमारे युगस्ती योगा सोसाइटी जो है वो एसोसिएट सेंटर है उसका, तो मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री ऑफ की कोर्सेज हम करवाते हैं और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर जब करते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना कैरियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है, ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं, योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं तो एक अच्छी खासी आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ हुआ इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं ज्यादा। आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े जो सो ऑफिस में काम करने वाले, बैंक में काम करने, उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है।
1: जी, अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शलाइजेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुंच बढ़ाने का ये सही तरीका है?
0: दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना। कमर्शलाइजेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप ऑब्सिटी ही कर रहे हो उसकी, घर घर तक योग पहुंच रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता हर एक व्यक्ति दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, बट हमारा बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी को इस्तेमाल मत करो। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखा देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता आप करना शुरू कर दिया तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन सा आसन आप नहीं करें, कौन सा करें और किस समय करें, और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है।
1: जी,
0: इसलिए एक योग अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें, अच्छे से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा कहना है।
1: बिल्कुल, पहले वन ऑन वन करके और उसको समझना जरूरी है, तो एक योग गुरु होना पहले जरूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप, एक एक चीज योग के बारे में समझाई है और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट में मेंशन करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, वहां आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को?
0: देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप सही बात कर रहे हैं और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज योग को भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है, आधुनिक उसको भी दे दिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कॉन्स्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग में अपने जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक, हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो। तो योग वो वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ, हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ, आप बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको अगर आप बना लेते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छा फील करते हैं और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो हाँ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप वो चीज को, असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज को हम आगे बढ़ाए, साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाए। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माहौल पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है आपको, आपको प्राइज मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीजों के लिए कार्य नहीं किया, हम अपनी क्लासेस लेने में, हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती बड़े आनंद भाव से लेती है, हमें अपनी कक्षाएं लेने में आनंद, हमें वर्कशॉप लेने में, सेमिनार करवा लीजिए, योग के लिए तो आप दिन रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में
1: जी। तो बिल्कुल, आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास, या सभी एज ग्रुप्स के लोग आते हैं?
0: सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी, किड्स योगा भी है हमारे पास, जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं, इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा विन्यास फ्लो हैं, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी हैं। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉडी को एकदम अपना कहते ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से, इतना उनका स्टेमिना एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया, अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को अपना कर, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा से योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फील करते हैं योग, और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फील करवाने भी, योग के माध्यम से आपका कैसा स्टेमिना एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है, तो अच्छा लगता है।
1: आपने अलग से कोर्सेज डिजाइन करने पड़ते हैं आपको एज वाइज आयु वर्ग के हिसाब से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए, किड्स छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम गेम में सिखाना पड़ता है योग को, वो इतनी बड़ी हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे। और साथ में जो होते हैं जो युवा वर्ग आता है तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है, तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यास फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में, और पसीना जब बहाते तो उनको अच्छा फील होता है, स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60 प्लस वाले 65 प्लस वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ, और साथ में हम उनको हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिजाइन कर रखी हैं, उनके स्टेमिना बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन यहाँ पर आए। साथ में थेरेपेटिक योग है, तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग अलग कक्षाएं और अलग अलग समय डिसाइड कर रखा है, फिर वहां पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहां पे योग को हम कर लेते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है मैंने सुना है जब योग की बात की जाती है एक थेरेपी के रूप में?
0: मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने 17 अगस्त को ही हमने एक वेदो उपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का, उसके अंदर साउंड हीलिंग मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्जाइटी को, क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, चिंताओं की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फास्ट लाइफ हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं ये स्लो पॉइजन के रूप में हमारी फास्ट लाइफ जो है एक स्लो पॉइजन के स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही है, डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड, आजकल डायबिटीज हर एक 30% को डायबिटीज है, थायराइड देख लीजिए आप, और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये जब आप ये करते हैं तो साथ साथ में आप एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए साउंड थेरेपी, आप बहुत पावरफुल, अपने आप में एक विज्ञान है साउंड, तो सारे आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाता है, और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, हर एक लेवल पे इफेक्ट आता है उसका, बहुत अच्छा, तो ये बहुत
1: बिल्कुल जी बीमारियों के लिए भी है और बहुत सारी जो आपने बातें बताई उनको लेकर भी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि खूबसूरती के लिए भी है, क्योंकि डॉक्टर हेमलता जी ने तो एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुषमा जी कि आपको याद रहा ये बात। हमने देखा है कि योग के माध्यम से आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, आत्मशक्ति आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप हर एक फील्ड के अंदर जाके देखो। तो फिर वही हम देखने गए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहां पे कम दिया करा गया, और हमने वास्तव में ब्यूटी पेजेंट जीता है। तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूड आपका अच्छा रहता है, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। तो जब आप खुश रहते हो, अंदर से खुश रहते हो, तो प्रसन्नता आपके चेहरे पे खिलती है और फिर आपका ग्लो बढ़ता है, तो अपने आप ही अच्छा फील होता है और आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपका होता ही होता है। देखने में बड़ा अच्छा, आपका शरीर आपका अच्छा हो जाता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है सुषमा जी। और वास्तव में फेशियल योगा आजकल हो गया है, फेस योगा आपका हो गया है, वो आप कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करने के लिए आपका सर्वांगासन है, हलासन है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर आसन है जो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाता है। ओके, आप इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और डेफिनेटली योग ने तो हमारा तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है।
1: तो इतनी जी इतनी खूबसूरती से आपने जब ये सारा एक्सप्लेनेशन रखा है सबके सामने, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो भी खास तौर पे महिलाएं सुन रही हैं इस चीज को, वो जरूर ट्राई करना चाहेंगी ये सभी कोर्सेज जो आपने डिजाइन किए हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीजों को लेकर। डॉक्टर हेमलता, क्या मन में शेष है अपने प्रयासों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, किस तरह की उड़ान बाकी है?
0: देखिए, हम ये कहेंगे कि उड़ान तो हम बहुत उड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि योग को घर घर, तो वो सही ऑथेंटिक योग जो ट्रेडिशनल योग है उसको लोग समझे, लोग बात समझेंगे, योग को अपनाएंगे, अपने जीवन का सुधरेगा, तो हर एक घर के अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा, निरोगी काया होगी, तो फिर दुख होंगे ही नहीं आपको, और फिर आप अच्छे से जियोगे अपनी लाइफ के साथ में, जीवन के साथ में, तो हर जगह पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होगा। और धीरे धीरे करते करते ऐसे सोच के देखिए कि सारा समाज, सारा राष्ट्र पूरा स्वस्थ है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं और सब जने अपने जीवन को बड़े ऊर्जावान होके, आत्मविश्वास के साथ में अपने जीवन को जी रहे, तो पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे समाज के अंदर फैलेगी, तो राष्ट्र, विश्व, पूरा एक माहौल आपका जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बस इसके अंदर आगे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, ऑथेंटिक पारंपरिक जो हमारे योग विज्ञान है उसको मेरा हर पल जीवन का, मैं उसको बस आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से भूमिका निभाती जाऊं, यही मेरी इच्छा है। करो योग, रहो निरोग, योग
1: खूबसूरत
0: जीवन जी। का बनाना है, अभिनंग बनाना है, एंड मेक योग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, देन इट विल बिकम आर्ट ऑफ लाइफ। बस इतना
1: ही। ब्यूटीफुल जी, चलिए, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका, और हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये उड़ान इसी तरह प्रफुल्लता से आप आगे बढ़ती रहें, ये उड़ान बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता शर्मा हमसे खास बातचीत करने के लिए।
0: मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से जो हम चाह रहे थे हमारे समाज को पहुंचाना, आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें पूछा, सभी के क्वेश्चंस आपने किए हमें, और ईश्वर करे ऐसा हो कि सबके अंदर वो एक चिंगारी जाग जाए कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लू, बस मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लू कि मुझे पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मुझे भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से मुझे स्वस्थ रहना है, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो सब आगे बढ़े, योग को जीवन का अभिन्न बनाकर आगे बढ़े।
1: थैंक यू डॉक्टर हेमलता शर्मा, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सुषमा।
2: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
3: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलेन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ।

का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेजमियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब हजार लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

संजय ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

हेलन जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेज़मियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब 1000 लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

चलन जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

करण जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

भाई।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत हम चलते चलते गाते हैं, जिंदगी के साथ गाते हैं और हर मोड़ पे गाते हैं। गीतों का ये कारवां लेके आई हैं हमारे साथ अचुरानु 16 हमेशा की तरह है। हर रविवार को नए एपिसोड के साथ आप सुनते हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। तो आइए चलते हैं अचुरानु 16 के साथ। आज पहली बार आए हैं इस मंच पर आदित्य गोयल, आपकी आवाज आपकी पहचान। अचुरानु और आदित्य गोयल की आवाज में ये सुरीला सॉन्ग, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।

जमीन ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, और चलने का नाम ही तो जिंदगी है, और इसी जिंदगी को हम गीतों के साथ गाते हैं और आपसे बतियाते हैं। तभी किसी ने कहा है जिंदगी प्यार का नगमा है, किसी ने कहा है जिंदगी तो जिंदगी है। क्या आखिर ये जिंदगी? इतने गीतों में सुनने के बाद भी जिंदगी सच में प्यार का ही गीत तो है। बस इसे एक पल ठहर के समझने की जरूरत है। अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं देवर।

जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। देव ऋतु अपनी आवाज दे रहे थे इस सुरीले सॉन्ग में, अर्चुरानो 16 के साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और हम मंजिलों के मुसाफिर। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो बट आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के इस मंच पर हमारे संग हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानू 16। और अभी जो गीत आपने सुना उसमें अर्चुरानू 16 का साथ दे रहे थे झुमरू। और अब आ गए हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में गीत बन के राजेश काला। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, वादे नहीं भूलेंगे कसमें नहीं तोड़ेंगे, बहुत ही वियोग श्रृंगार का ये सुरीला सॉन्ग हमेशा गाया जाता रहा है और आज हमने भी इस गीत को आपको सुनवाने के लिए राजेश जी को और अर्चुरानू 16 को बुलाया है। आप सुनिए इस गीत को और बताइए कैसा लगा आपको।

राजेश काला साथ दे रहे थे इस गीत में अर्चुरानो 16 का, और अब सिंग फॉर पीस अर्चुरानो के संग।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। सिंग फॉर पीस को अर्चुरानो 16 के साथ सुनने के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, हमें विजय ताना और अर्चुरानो 16 का ये सुरीला गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मन।

मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये पहला पार्ट आपने सुना और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा। किशोरदा के कुछ सुरीले गीत लेके इस मंच पर मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में अब सुनते हैं अनुराग की आवाज में ये सुरीले सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और इस प्रोग्राम में इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं हमारे उन श्रोताओं को और उन सिंगर्स को जो गाना चाहते हैं इस मंच पर। जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानू 16 और अनुराग के साथ आज इस मंच पर किशोरदा को अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे मंच के मेल सिंगर अनुराग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच और इस मंच पर हम हर रविवार आपको सुनवाते हैं एक नया एपिसोड।

और अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ख्वाब के सिलसिले और सिलसिले से आगे बढ़ के अगले गीत में यही कह रहे हैं अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग आ गए हैं वियोग श्रृंगार का ये सुरीला गीत। जिंदगी की बात है और जिंदगी से शुरुआत है और जिंदगी हमें कहां कहां ले जाती है, यही जिंदगी की पहचान है।

आज के इस प्रोग्राम को आप रिवर्स मोड में सुन सकते हैं, क्योंकि किसी अजनबी से पहले मुलाकात होती है और फिर न जाने क्या क्या बात होती है, और उन्हीं बातों से सिलसिले चलते हैं और कहीं हम कस्में खाते हैं, कहीं वादे करते हैं और कहीं कहते हैं कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। लेकिन ये मुलाकात भी तो एक सिलसिला है जिसे न जाने किसने शुरू किया और कब इसका समापन होगा।

अनुराग बता रहे थे एक अजनबी हसीना से मुलाकात, और मुलाकात के बाद में जो वादें जो कस्में हुई उनके बारे में। आपने सुना प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। हमने इस प्रोग्राम का ये शीर्षक इसीलिए लिखा है और इसीलिए रखा है कि आप गीत बन के इस मंच पर आ सकते हैं, आवाज में आवाज मिला सकते हैं। और हमारे संग दो सिंगर हैं, अर्चुरानु 16 और अनुराग। यदि आप मेल सिंगर के साथ गाना चाहते हैं तब भी, और यदि आप फीमेल सिंगर के साथ गाना चाहते हैं तब भी आप का सादर वंदन है, अभिनंदन है। इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सभी का सादर अभिनंदन। आज का ये सुरीला सफर हम यहीं संपन्न करते हैं, और अर्चुरानु 16 और अनुराग को कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। अनुमति दें, नमस्कार।

मैं आवाज हूँ उर्दू गीत मेरा। इस प्रोग्राम का सबसे ताजा तरीन एपिसोड लेके हम हाजिर हैं और हमारे संग है, हमारे साथ हैं अर्चुरानो 16 यानी अर्चना अग्रवाल और मेल सिंगर अनुराग। आप दोनों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस खास आयोजन में। आवाज, गीत और संगीत, इन तीनों से हो जाए जब प्यार, या यूं कहें कि इन तीनों का जब हो जाए मेल तो उसको क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सच में योग। क्योंकि हम गाते हैं तो हमारी धड़कनें, हमारी सांसें जो संगीत के साथ चलती है, रुकती है, ठहरती है और जो व्यायाम करती है, वो सच में योग ही तो है। आपने सोचा कभी इस तरफ? तभी तो संगीत को एक तरह की थेरेपी कहा जाता है। योग दिवस है, संगीत का दिन है और ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जो या तो पिता होते हैं या पिता तुल्य होते हैं। तो आज एक साथ इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए अर्चुरानो 16 क्या कह रही हैं अपने पहले इस सुरीले सॉन्ग में, आइए सुनते हैं। सिंग फॉर पीस साथ दे रहे हैं अर्चुरानो का।

तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। और हम ये कहते हैं योग दिवस पर कि तुम जो योग करोगे संगीत का, तो सच में सांस को रोक लोगे, और सांस को रोक लोगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। इसलिए गीत बहुत जरूरी है, संगीत बहुत जरूरी है। ये ऐसी दवा है जिसे खाना नहीं पड़ता, गाना पड़ता है। और आप गा सकते हैं तो इस मंच पर आ सकते हैं। अचुरानो और सिंग फॉर पीस की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला नगमा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आवाज की बात, गीत की बात, संगीत की बात। और मिल जाएं इस तरह जैसे दो लहरें हो उस तरह, लेकिन मिलना, और मिलने का नाम ही तो योग है, और वो आसान नहीं है। उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और गीत के माध्यम से मेहनत कर रही हैं हमारी जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानो 16। और अगले गीत में कह रहे हैं मनोज जोली अर्चुरानो के संग, मंजिलें मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। आइए सुनते हैं।

चुरानों का साथ दे रहे थे मनोज जौली। और अब इस मंच पर आ गए हैं अचुरानू 16 का साथ देने इस गीत में राम जायसवाल। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।

इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप योग करेंगे तो फिट रहेंगे, जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे, फिट रहेंगे तो गीत गाएंगे और गीत हम तक पहुंचाएंगे, गीत सुनाएंगे। आपको शुभकामनाएं गीतों के लिए, आज के दिन के लिए। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और अब अचुरानू के संग बबलू आर्या।

बबलू आर्य और अचुरानु 16 की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, पर तेरे बगैर जिंदगी

जी भर के जीना है और गीत भी गाना है और गुरु मंत्र को दोहराना है तो सच में जरूरी है, बहुत जरूरी है योग करना। आज का ये प्रोग्राम योग दिवस को समर्पित था और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर जिसे आप अनुराग के नाम से जानते हैं। गीतों के प्रति अनुराग, उनका प्यार देखते देखते इतना बढ़ गया है कि अनुराग से सच में उनको राग कहने का मन करता है। जो गाने का अंदाज आया है, जो गाने की अदाई है, उसको हमारी तरह आपने भी महसूस किया होगा। आइए सुनते हैं अनुराग का इस प्रोग्राम का पहला गीत।

चांदनी रात है तू मेरे साथ है और गीतों की बात है और आज हम गीत सुना रहे हैं आपको जयपुर रेडियो के प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर अनुराग सेना की आवाज में।

सपना वो हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है और ये दुआ कर रहे हैं इस मंच पर अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर गीत लेके आते हैं अनुराग और अर्चुरानो 16। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड का ये सुरीला मंच हमारे श्रोताओं के लिए। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कहने जा रहे हैं अनुराग।

ये रोग ला इलाज है फिर भी कुछ कराओ, और हम तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ योग करने की जरूरत है, योग से सारे इलाज हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर आवाज है जिसे आप सुन रहे हैं अनुराग सिन्हा की, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुने अगली गजल, आवाज अनुराग की।

बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अनुराग गा रहे थे ये सुरीली गजल। कैसी लगी आपको अनुराग की आवाज? आपकी आवाज आपकी पहचान। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। और ये गम का गीत नहीं है और ना ही छुपाने वाली बात है, क्योंकि हम इस मंच पर आपके साथ हैं जिस का नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के हमारे द्वे मेहमान अर्चुरान 16 और अनुराग का हम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कहते हैं सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। हमें अनुमति ने इस प्रोग्राम से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सबके लिए और आज के लिए ये गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल के एपिसोड नंबर 8 में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जी हां दोस्तों, मैं अमीषा पटेल वडोदरा गुजरात से लेकर आ गई हूं फिर से गाता रहे मेरा दिल का एपिसोड नंबर 8। और मेरे साथ है आज देवेंद्र जी, जो कि गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम को होस्ट करते हैं मेरे साथ, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका देवेंद्र जी प्रोग्राम के एपिसोड नंबर 8 में।
1: थैंक यू सो मच अमीषा जी, इस खूबसूरत सफर में मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का ये एपिसोड, जो गाता रहे मेरा दिल का 8वां एपिसोड होगा, और बहुत ही खूबसूरत कलाकार आज हमारे साथ हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और आप बताइए कि आज आप क्या करने वाले हैं।
0: इस बार एपिसोड 8 में हम जो गाने लेकर आए हैं वो गाता रहे मेरा दिल सीजन 7 से लिए गए हैं, जो कि 17 मई को हुआ था वडोदरा गुजरात में। उसी में से हमने एपिसोड नंबर 7 भी किया था, और उसी इवेंट के सीजन 7 से हम ये एपिसोड 8 भी ले रहे हैं। तो सभी सिंगर्स और श्रोतागणों का मैं स्वागत करती हूँ एपिसोड 8 में। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने से, और एक बहुत ही खूबसूरत कपल से, जिनका नाम है मनीष तिवारी जी और वंदना तिवारी जी। जी हाँ दोस्तों, मनीष जी और वंदना जी जयपुर रेडियो के हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार जुड़ने जा रहे हैं। सीजन 7 जो गाता रहे मेरे दिल का हुआ था 17 मई को, उसमें वो पहली बार हमारे साथ जुड़े थे, और क्योंकि ये एपिसोड हम सीजन 7 से ले रहे हैं, तो मनीष जी वंदना जी का भी ये पहला परफॉर्मेंस होगा हमारे गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम में, जो कि जयपुर रेडियो पे आता है। और दोनों ही बहुत खूबसूरती से गाते हैं, बहुत ही मजेदार सिंगर्स हैं दोनों। लेकिन मनीष जी के बारे में मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही उम्दा सिंगर है, और मुंबई के म्यूजिकल ग्रुप्स में भी वो काफ़ी जाने जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ भी जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। मुंबई में भी उनके परफॉर्मेंसेस होते हैं, और वो काफ़ी सालों से म्यूजिकल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। बड़ौदा में वो हमसे गाता रहे मेरा दिल से सीजन 7 में जुड़े, और हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि हम मनीष जी और वंदना जी का ये गाना अब गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम, जो कि जयपुर रेडियो पे आने वाला है, उस पे लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं मनीष जी और वंदना जी की खूबसूरत आवाज में, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं ना रहूं मेरे बिन तू ना रहे। ये खूबसूरत गाना जो कि ओरिजिनली रफी जी और लता जी ने गाया है, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, और बहुत ही पॉपुलर ये गाना है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना मनीष जी और वंदना जी की आवाज में।

क्या बात है, क्या बात है भाई। मनीष जी और वंदना जी, बहुत अच्छा वादा निभाया आपने और वादा करने के लिए बोला है। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को कल्याण जी आनंद जी के मधुर संगीत से सजाया गया था और आपने आज इसे सुना करके श्रोताओं की वाहवाही लूटी है। बहुत ही बेहतरीन गीत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सविता जी और महेंद्र जी से बहुत ही प्यारा सा गीत छोटी सी बात फिल्म से। इस गीत को यशुदास जी और आशा जी ने मिलकर गाया था। योगेश के लिखे इस गीत को सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया था। आइए हम सुनते हैं इसे सविता जी और महेंद्र जी की आवाज में।

वाह सविता जी, महेंद्र जी, क्या खूबसूरत मजेदार गाना सुनाया आपने। ये जो चुलबुला सा गाना है वो मेरा भी फेवरेट गाना है, और सविता जी और महेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस गाने को निभाया है। सविता जी के बारे में कहना चाहूंगी, वो गाता रहे मेरा दिल की रेगुलर सिंगर है और काफी सीनियर लेवल की सिंगर है वो। और महेंद्र जी भी हमारे साथ दो तीन एपिसोड से, हमारे दो तीन सीजन से जुड़े हुए हैं, और वो ही बहुत उम्दा गायक है, बहुत खूबसूरत आवाज भी है, गायकी भी बहुत खूबसूरत है उनकी। तो सविता जी, महेंद्र जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ इस खूबसूरत गाने को निभाने के लिए, जो कि मेरा भी एक फेवरेट गाना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। तो अगला गाना जो है वो एक सोलो सॉन्ग है, जिसे लेकर आ रहे हैं सुशील जी। जी हाँ, सुशील जी को आपने पहले भी कई बार सुना होगा जयपुर रेडियो में। वो गाता रहे मेरा दिल ग्रुप के रेगुलर मेंबर है और इवेंट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार भी वो एक बहुत ही खूबसूरत गजलनुमा गाना है लेकर आ रहे हैं। मैं

क्या बात है, क्या बात है सुशील जी। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, बहुत ही प्यारा सा गीत है आपकी परछाइयां फिल्म से, और इसे रफी साहब ने गाया था। राजा मेहंदी अली साहब के लिए इस गीत को मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था, और आपने अपनी खूबसूरत आवाज में इसे सुना करके वास्तव में वाहवाही लूटी है श्रोताओं से। बहुत ही खूबसूरत गीत। चलिए आइए सुनते हैं हम हमारे कर्णधार, हमारे इस गाता रहे मेरा दिल के फाउंडर और डायरेक्टर जीत साहब और अमीषा जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत संगीत जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसे संगीतबद्ध किया था। तेजाब फिल्म के इस गीत को अमित कुमार और अनुराधा पौंडवाल जी ने गाया था, और आज आप इसे सुनेंगे जीत वाधवा जी से और अमीषा पटेल जी से, जो गाता रहे मेरा दिल के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं।

आशा करती हूँ ये जो ड्यूट सॉन्ग्स हमने पेश किया गाता रहे मेरा दिल के ऑर्गेनाइजर्स ने, वो श्रोतागणों को पसंद आया होगा। और ये गाना भी मुझे बहुत ही पसंद था और हम पहली बार यानी गाता रहे मेरा दिल के ऑर्गेनाइजर्स का ये पहला ड्यूएट जयपुर रेडियो पे प्रसारित हुआ, उसका मुझे बहुत ही आनंद है और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगला गाना जो लेकर आ रहे हैं वो एक ड्यूएट सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत एक मूवी जो बहुत पॉपुलर हुई थी अपने टाइम में, ब्लैकमेल, उस मूवी का ये गाना है। और ये गाना जो लेकर आ रहे हैं वो है मिस निशी एंड मिस्टर मोहन, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन गाना गाते हैं। और ये जो गाना है वो बहुत ही एक यूनिक गाना लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कैरियो के मिट में इसको सुना नहीं है, लेकिन गाना बहुत ही बढ़िया है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ओरिजिनली गाया है गाना और कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक है। और इसको हम पेश करने जा रहे हैं निशी जी और मोहन जी की खूबसूरत आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना।

क्या बात है, क्या बात है निशी जी और मोहन जी, बहुत ही खूबसूरत ब्लैकमेल फिल्म का गीत आपने सुनाया है। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं संजय जी से एक प्यारा सा सोलो गीत। ब्लैकमेल फिल्म से ही इस गीत को लिया गया है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था और इसे प्रस्तुत करने वाले हैं संजय जी। आइए सुनते हैं हम इनकी आवाज में।

वाह क्या बात संजय जी, इस खूबसूरत गाने को बहुत ही खूबसूरती से निभाया आपने। बहुत ही उम्दा गायकी है आपकी भी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे ग्रुप से यानी कि गाता रहे मेरा दिल से पहली बार सीजन 7 में जुड़े, और अब जयपुर रेडियो में भी आपका ये पहला परफॉर्मेंस है, तो मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और आपको ढेर सारी बधाइयाँ भी देती हूँ इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को निभाने के लिए। बस ऐसे ही गाते रहिए और गाता रहे मेरा दिल में आते रहिए। अगला गाना जो है वो एक ड्यूएट सॉन्ग है और वो पेश कर रहे हैं हमारे रियल लाइफ कपल मिस आशा एंड मिस्टर अनूप। अनूप जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, बहुत ही उम्दा सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक है और परफॉर्मेंस में जान डाल देते हैं। और आशा जी के बारे में कहना चाहूंगी कि वो एक चुलबुली सी नटखट सी सिंगर है। जी हाँ, जो जहाँ भी होती है माहौल बना देती है, गाना तो वो गाती ही है अपने खूबसूरत आवाज में, लेकिन एक अच्छा सा माहौल भी बनाती है अपनी प्रेजेंस से वो। तो मुझे बहुत खुशी है कि दोनों ही हमारे ग्रुप के रेगुलर सिंगर है और हमारी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है उन दोनों का एक ड्यूट सॉन्ग पेश कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का ही वेलकम करती हूँ मैं। और जो गाना है नींद न मुझको आए, जो कि ओरिजिनली हेमंत कुमार और लता जी ने गाया है, तो ये गाना हम आशा जी और अनूप जी की खूबसूरत आवाज में सुनते हैं। चलिए

बात है, क्या बात है आशा जी और अनूप जी। नींद ना मुझको आए, कितना प्यारा सा गीत आपने सुनाया है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया ये गीत आपने अपनी मधुर आवाज में सुना करके हमारे श्रोताओं को बहुत ही सुकून दिया है। चलिए सुनते हैं हम फाल्गुनी जी और अरविंद जी को। इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है, अजनबी मुझको इतना बता। बहुत ही प्यारा सा गीत, प्यार तो होना ही था, इस फिल्म से लिया गया है। समीर ने इस गीत को लिखा था और जतिन ललित ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं हम फाल्गुनी जी और अरविंद जी से।

अरविंद जी, फाल्गुनी जी, क्या कहने, तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप दोनों ही एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा कलाकार है और ये कॉम्बिनेशन सुनना हमारा नसीब है। अरविंद जी, फाल्गुनी जी पहले भी हमारे जयपुर रेडियो प्रोग्राम में आ चुके हैं, सुन चुके हैं लोग उन्हें, पर जब भी हम सुनते हैं हमें एक नयापन लगता है और उसको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों ही बहुत मंझे हुए कलाकार है। अरविंद जी तो गाते भी है, सिखाते भी है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दोनों ही गाता रहे मेरा दिल के सिंगर्स है, प्रोग्राम में आते हैं, हमारी हर इवेंट में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, और पहले भी जयपुर रेडियो में हमारे प्रोग्राम में गा चुके हैं। तो अरविंद जी, फाल्गुनी जी, आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। गाता रहे मेरा दिल के इस एपिसोड 8 को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपने सभी सिंगर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जिस भी सिंगर ने इस एपिसोड 8 में पार्टिसिपेट किया है उनका दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। साथ में सभी श्रोतागणों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं नए एपिसोड को लेके आने के लिए। साथ में मैं हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर जीत वाधवा का भी धन्यवाद करना चाहूंगी इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी मदद है रहती है उनकी उसके लिए। और मिस्टर हरिशंकर व्यास का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जयपुर रेडियो के माध्यम से। और स्पेशल थैंक करना चाहूंगी मैं आरजे देवेंद्र जी का। जी हाँ दोस्तों, आरजे देव जो कि मेरे साथ ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए। तो चलिए आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्द नए एपिसोड के साथ हम वापस आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए जयपुर रेडियो और सुनते रहिए गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कदमों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आओ झूमें गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

हेलेन जी का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेज़मियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब 1000 लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर और मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

किरण जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

हेलन जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेज़मियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब 1000 लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिन चू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

चलन जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

हेलन जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

बाधा मोहंती की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई आवाज़ नई पहचान हम उन सिंगर्स को दे रहे हैं ये नाम जो पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के नोहर तहसील की और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सुनीता इस मंच पर है। वेलकम है सुनीता, आपका पहली बार इस मंच पर, आप जयपुर रेडियो की प्रोग्राम सुनती हैं और आपका भी मन हुआ कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके गीतों के साथ आपका। नई आवाज़ नई पहचान में हम आज एक ऐसी आवाज़ को लेके आए हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। राजस्थान में हम कहें तो गंगानगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक तहसील है नोहर। नोहर राजस्थान से हमारे साथ हैं आज की नई आवाज़ युवा आवाज़ जो आपकी आवाज़ आपकी पहचान बनने वाली है आज इस मंच पर, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जिस प्रोग्राम को आप रोज़ सुनते हैं शाम 6 बजे जयपुर रेडियो से। तो आज हमारे संग हैं सुनीता। सुनीता वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। अपना परिचय दें आप हमारे सभी लिसनर्स को, सुनने वालों को।
1: मैं सुनीता हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने म्यूजिक है वो मतलब बचपन से स्टार्ट कर दिया था
0: जी।
1: और मैंने मेरे पापा से सीखा है म्यूजिक
0: जी।
1: और मैंने म्यूजिक में MA भी कर रखी है और विशाख भी कर रखी है, और मैं गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी।
0: हमारी ओर से ही शुभकामनाएं हैं। तो
1: आप
0: कौन कौन से गाने आपको पसंद है, गजल गाती हैं कि ठुमरी गाती हैं, या फिर दादरा, या फिर फिल्मी बॉलीवुड म्यूजिक, या लोक संगीत, इसमें आपकी क्या अभिरुचि है वो जरा सा इस पे प्रकाश डालिए जरा सा।
1: मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नोहर तहसील में रहती हूँ, और वैसे मैं ऑलराउंड सभी प्रकार के सॉन्ग गाती हूँ, फिल्मी गीत भी गाती हूँ, रागे भी गाती हूँ, ठुमरी भी गाती हूँ, और तालों का भी मुझे नॉलेज है। वैसे मैं 3 ताल में गाती हूँ, दादरा में गाती हूँ, रूपक में गाती हूँ।
0: तो कुछ सुनाएंगे आप अपने, वैसे बिना म्यूजिक के, कोई भी 2 लाइनियाँ?

ऐसा मंजर हो या ना हो, हम श्रोताओं को ज़रूर बताएंगे कि ये मंजर ज़रूर है कि काश नहीं सच में हमारे साथ हैं सुनीता आज इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। और इस प्रोग्राम को हमने युवा जो सिंगर्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उनका परिचय हो जाए और हमारे दुनिया भर में जो भी युवा गायक हैं उनको हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जयपुर रेडियो पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो आज आप सब सुनेंगे सुनीता को। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपके गीतों के साथ। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत। और अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पहला गीत तो सुन लें। आवाज सुनीता की हनुमानगढ़ से, हमारे संग युवा सिंगर नई आवाज नई पहचान लेके। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन।

कभी कहा ना किसी से, कभी कहा ना किसी से तुम्हारे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने को। बहुत ही खूबसूरत नॉन फिल्मी गजल हमने सुनी, जी के एल्बम से ली गई ये गजल, और आवाज हमारे युवा सिंगर सुनीता की, हनुमानगढ़ नोहर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगली पेशकश। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले सॉन्ग में सुनीता की आवाज़।

आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई बार पहली बार हमारे संग हमारे साथ हैं सुनीता हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ राजस्थान से सुनीता, युवा कलाकार। अपने खूबसूरत स्वर के साथ, आवाज के साथ वेलकम है, अभिनंदन है आपका इस मंच पर।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और जब रेडियो का साया आपके साथ है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं सुनीता को, प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान के तहत आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और आइए सुनते हैं अगली आवाज़ में सुनीता को एक बार फिर।

क्लासिकल सुपर सुपर डुपर सॉन्ग, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले तो जिंदगी हो जाए सफल। और सुर में सुर मिलाने के लिए आपको जयपुर रेडियो पर आना ज़रूरी है और वहीं आपका सुर और सुर की साधना सही हो सकती है। और इसके लिए हमने एक स्वर साधना प्रोग्राम भी रखा हुआ है जो रोज़ रात 8 बजे आता है और उस पर हमारी जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर आपका साथ देती हैं। तो सुर से सुर मिलाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है, हम तो यही कहेंगे। और सुर के साथ शब्दों की साधना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द और सुर जब दोनों मिल जाते हैं सुनीता तो बहुत कमाल करते हैं, यानी वो उस ईश्वर, वो जो हमारी साधना का साध्य है, हम उससे मिल जाते हैं, उससे हम एकाकार हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वर शब्द और सुर और उसकी साधना की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना प्रयास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपके आवाज़ की रोशनी पूरी दुनिया में फैले और आप यूं ही गाती रहें। बस थोड़ा सा आत्मबल और शक्ति की ज़रूरत है। तो बहुत बधाई हमारी ओर से और आइए सुनते हैं आपका अगला खूबसूरत गीत। सुनीता हनुमानगढ़ से हमारे साथ, हनुमानगढ़ राजस्थान।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा इस शाम का लंबी है कि नहीं, हमारे श्रोताओं को भी पता नहीं लगा। और अब हम प्रोग्राम के इस मोड पर आ पहुंचे हैं कि हमें बताना होगा कि आज आपने नई आवाज़ नई पहचान में सुना सुनीता को, नोहर तहसील की रहने वाली हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान से आप बिलोंग करती हैं और पहली बार हमारे इस मंच पर आई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि आपके जो श्रोता हैं जिन्होंने आपके इस प्रोग्राम को सुना और सराहा है, हम उनके नाम भी ले लें। आप हैं केवल कृष्ण शर्मा, गंगानगर राजस्थान से, भट्ट हीना गुजरात से, अनुपमा खुराना दिल्ली से, जय सिंह सीकर से, लोकजीत दास असम से, लक्ष्मी शर्मा मुंबई से, जीना चौधरी हरियाणा से, चित्रा वर्मा, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, सुनील चड्डा पंजाब से, पूजा नाथकर्णी जर्मनी से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, रुक्मणी लालवानी वडोदरा गुजरात से, मंदाकिनी वडोदरा गुजरात से, महेश रावल वडोदरा गुजरात से, विभूति पंचोली वडोदरा गुजरात से, ओम प्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से, राजगोड़ मुंबई से, हसीना बानू जयपुर से, संगीता त्यागी बीकानेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, मुस्कान इसरानी जयपुर राजस्थान से, सत्यप्रकाश सिन्हा यूपी से, तेज दान चारण जोधपुर राजस्थान से, राम सिंह यादव जयपुर से, सीमा बजाज दिल्ली से, राजा राम जवर बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से, और श्याम थाडे। आप सबका आभार और धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने आपके प्रोग्राम को सुना है और सराहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ दें हम। और इसके अलावा जिन लोगों ने आपके गीतों को पसंद किया है, हम उनके नाम भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप हैं सुषमा गोदरा, कपिल त्रिवेदी, ओम गायकवाड़, गीता बेन, दीपिका त्रिपाठी, राधे राधे, कोलू परवाज, अनुपमा, नीलेश शाह, आशा रानी, सैयद यूनिस, अब्दुल जमाल, सपना चौहान हिमाचल से, संता राय, मीना प्रकाश दिल्ली से, मजहर यूपी से, सचिन यूपी से, अनीसा बेगम बरेली से, एनडी रटवानी गुजरात से, हिमांशु जोधपुर से, शिवनाथ गौड़ दुबई से, कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र कुमार पंजाब से, योगेश सूरती अहमदाबाद से, विक्की जय जय जीवन घोष वेस्ट बंगाल से, ध्यानवंती रेखा भाटिया अजमेर राजस्थान से, नेहा रावल, उत्तम सिंह जंघेल, बीना धुरवा, अलीम खान, प्रवीण एम आर व्यास, सीरीश असपी अजमी खान, फैजल मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, प्रणब नोमेश, जगदीश देवांगन, दोमन ठाकुर, दिलीप विजय, सुरजिता घोष, रघुवंशी, जया बारोट, जयेश बारोट, ज्योति गोमरे, पूनम सिंह बिहार से, सीताराम कागरा और आर के। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइस से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए सबको शामिल करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए हम क्षमा

बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुनीता नौहर तहसील से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। फिर मिलते हैं एक नई पहचान, नई शख्सियत के साथ, उभरती हुई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और इस मंच पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर सीमा फूकन के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम का।

0: तुम्हारे कहने से पहले ही बोल उठी आवाज, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा फोकन। और हमारे साथ यानी जब रेडियो के संग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, आपके कोसिंगर, और अपर्णा अच्युता, उन दोनों की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे सीमा फोकन की सुरीली आवाज में गाए कुछ गीत, और इसी तरह हम सेलिब्रेट करेंगे इस मंच पर हमारे श्रोताओं के साथ सीमा फोकन का बर्थडे। तो एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। असम में मूल रूप से रहने वाली और आजकल जोधपुर में प्रवास करने वाली सीमा फोकन हमारे साथ। वेलकम है सीमा जी आपका, आपकी आवाज आपकी पहचान इस प्रोग्राम में। करते हैं सीमा जी से थोड़ी सी मुलाकात श्रोताओं के साथ।
1: मेरा नाम सीमा फोकन है और मैं भारतवर्ष के सुंदर राज्य असम की निवासी हूँ, लेकिन आजकल राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में रह रही हूँ। संगीत प्रेम मुझे बचपन से है और संगीत मेरा माता पिता की ही देन है। मैंने पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इन्फोएज इंडिया में कई वर्षों तक कंटेंट राइटर का कार्य बखूबी संभाला है। लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए काफ़ी वक्त मिला और मुझे एक बार फिर से मौका मिला गीत संगीत की मधुर दुनिया में वापस लौटने का और अपना शौक पूरा करने का। सिंगिंग ऐप के माध्यम से मैंने 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की, रोज़ लाइव सिंगिंग भी कर रही हूँ और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि रेडियो जयपुर के लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: तो हुजूर आली, वेलकम है सीमा फोकन का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और जो मन से कोई काम करता है वो 2 साल में रेडियो सिंगर बन सकता है, और ये सिद्ध कर दिया है हमारी आज की कलाकारा सीमा फोकन ने। तो चलते हैं सितारों की संगीत की दुनिया में। आपकी आवाज आपकी पहचान, आज की कलाकार सीमा जोधपुर से।

संगीत का सफर है और हमारे आज के प्रोग्राम की हम सफर हैं सीमा फुकन, मूलतः असम निवासी और आजकल जोधपुर रहती हैं। आज हमारे साथ हैं इस लाइव शो में जिसका नाम है आज के कलाकार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

की डली में लिपटी स्वीट सी वॉइस, कमाल की प्रस्तुति। सीमा, बधाई हो बहुत। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर आज के कलाकार प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं सीमा फूकन, जोधपुर राजस्थान से।

कितना सुख है बंधन में, और प्यार भरी बदली बन के बरस रही है जयपुर रेडियो के आंगन में। सीमा फूकन हमारे साथ हैं। आज आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

स्वर और संगीत के इस गांव में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान में आज हमारे साथ सीमा फुकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान बेहद खूबसूरत सुरीली आवाज। आपकी आवाज आपकी पहचान सीमा फुकन।

ऐसा समान न होता, कुछ भी यहाँ न होता मेरे हमराई जो तुम न होते। और जयपुर रेडियो की आज की हमराई हैं अपने शबनमी आवाज़ लिए हमारे संग सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आइए सुनते हैं आपकी आवाज़ में अगला खूबसूरत नगमा। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, सीमा फूकन।

वाह, आपने सुना प्रोग्राम आज की कलाकार। हमारी आज की कलाकार रही सीमा फूकन। जयपुर रेडियो की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपकी शबनमी मखमली गायकी के लिए। फिर मिलते हैं गीत संगीत की राहों में, आते जाते। सीमा जी, बहुत सारे विशेष हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे लिसनर्स के नाम हैं, हम किस तरह से उनको शामिल करें हमें मालूम नहीं, और वो तरीका भी नहीं आता हमें। दिल्ली से अनुपमा खुराना, गंगानगर से केवल कृष्ण शर्मा, डी के वर्मा बिहार सोपोर से, कामना सिंह बिहार से, चित्रा वर्मा, सोनल पारेख, सुनील चट्टा, पूजा नाटकर्णी जर्मनी से, रुक्मणी लालवानी, विभूति पंचोली, मंदाकिनी शाह तेजकरण गण, और अनीता दुगड़ नेपाल से। आपको अपनी ओर से जयपुर रेडियो की सिंगर सीमा फूकन को हैप्पी बर्थडे कह रही है। तो आप तक इन सब की शुभकामनाएं पहुंच गई होंगी, और भी शुभकामनाएं बराबर आ रही हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर सीमा फूकन को, जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर को, आज के दिन की, जन्मदिन की। धन्यवाद। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार, और आज के हमारे सिंगर मेहमान अहमदाबाद गुजरात से नीरज। वेलकम है नीरज, और नीरज लेके आए हैं अपने गीतों में प्यार की कहानी। प्रोग्राम का नाम गीत कहानी, और कैसे कह रहे हैं नीरज अपनी जुबानी, आइए सुनते हैं। रात की बात है, क्या हुआ सुन लीजिए इस शाम को।

बिल्कुल सावन ऋतु का सवेरा, दुनिया नीरज की गुलजार हुई, मतलब हो गया जिसे आप प्यार कहते हैं। और प्यार तो दीवाना होता ही है, आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं।

सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। और पैमाने में हम आज माप रहे हैं नीरज की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान के इस मंच पर। और आ ही जाता है दिल जिस पर आना होता है, और नीरज का दिल गीत कहानी पे आ गया है। और ये गीतों की कहानी लेके अहमदाबाद गुजरात से हमारे संग है, हमारे साथ हैं। देखते हैं नीले नीले अंबर पर चांद क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे बातचीत नीला बेन के साथ। बड़ोदरा गुजरात से हमारे इस मंच पर नीला बेन रही। नीला जी को बहुत धन्यवाद और आभार।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुरीले सिंकर, और आज हमारे संग हमारे साथ हैं शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित। वेलकम है मिलिंद जी, और बहुत दिनों बाद वो गीत चुन के लाए हैं मिलिंद जी, जिसमें पल पल चुने जाते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम में जो गीत होंगे वो सारे के सारे एक विनम्र गीतों भरी स्वर श्रद्धांजलि होगी। अदाकार, एक्टर, सदाबहार हीरो दिवंगत धर्मेंद्र जी को आइए पल पल की गिनती गिनते हम भी पल पल बढ़ते हैं, और पहला गीत सुनते हैं हमारे संग हमारे साथ मिलिंद पंडिता यूएसए से। आपकी आवाज आपकी पहचान।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म ब्लैकमेल में, ब्लैकमेल में धर्मेंद्र जी और राखी पर फिल्माया गया था और पल पल बन के दिन, सप्ताह, साल, महीने, न जाने क्या क्या बनता है। और वही पल ऐसा आता है कि हमें और हमसे किसी अपने की दूरी बना लेता है। सच में ये गीत बहुत लाजवाब गीत था और उस वक्त के युवाओं के लिए उनके दिल में हूबहू अपनी रूह के साथ उतर जाता था। हर प्रेमी के दिल में ये गीत बसता रहता था, चाहे उसकी आवाज सामने वाले को सुनाई ना दे। और इस गीत को उसी तरह से अभिनेता धर्मेंद्र जी को याद करते हुए हमारे आज के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित यूएसए से लेके आए हैं। आइए सुनते हैं इस हसीन शाम का अगला खूबसूरत गीत।

वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। सच में धर्म जी के फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद में सच में ऐसा लगने लगा कि रोशन हो गया है फिल्म जगत। और दुल्हन एक रात की का ये गीत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रफी साहब ने गाया और इसका संगीत दिया मदन मोहन साहब ने, और इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान साहब ने। और इस गीत को हमारे लिए आज इस मंच पर प्रस्तुत किया शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित ने। और अब जो दिल की सुनते हैं वो गीत भी सुनते हैं, आइए हम भी इसी गीत का लुफ्त उठाते हैं।

मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अकेला रहने दो। और ये एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र यानी धर्म जी के साथ फिल्म अनुपमा में हेमंत दा ने गाया था। और कैफी आजमी का ये गीत बहुत ही सुरीला, और इसमें खास बात ये कि इसका संगीत भी हेमंत दा ने ही दिया था। और हमारे लिए इस मंच पर धर्म जी को याद करते हुए शिकागो यूएसए से जयपुर रेडियो के सुरीले सिंगर मिलिंद पंडित इस गीत को लेके आए। आइए सुनते हैं, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। और आज हम ख्याल कर रहे हैं धर्म जी का। आवाज फिर वही, मिलिंद पंडिता शिकागो यूएसए से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आइए सुनिए सुरीला गीत।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में, और इसमें धर्म जी का साथ दिया था अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने। इस खूबसूरत गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, और हमारे लिए इस गीत को गाया मिलिंद पंडिता ने। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं सुरीले सिंगर प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आज के सुरीले सिंगर शिकागो यूएसए से मिलिंद पंडित। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे वो साज न दो।

किस कदर जल्दी किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा ये ना सोचा तुमने। मुकेश जी की आवाज इस गीत में फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे के लिए संगीत रहा था। इसमें कल्याण जी आनंद जी का और शमीम जयपुरी का संगीत इस गीत में। और सच में रात को इस गीत को सुन के हमें धर्म जी की याद बरबस आ ही जाती है, यदि आपने उस फिल्म को देखा हो, सोचा हो, सुना हो। बहुत खूबसूरत गीत हमारे लिए लेके आए मिलिंद पंडित। सुरीले संगीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। और एक ऐसा गीत जिसके बगैर धर्म जी को ये प्रोग्राम पूरी तरह समर्पित नहीं होता।

ये बताने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म में धर्म जी के साथ कौन ड्रीम गर्ल थी और वो ड्रीम गर्ल आज भी है धर्म जी की ड्रीम गर्ल। बहुत ही खूबसूरत गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत रहा इस फिल्म में और सच में ये अमर गीतों में से एक गीत हो गया। धर्म जी की याद जब भी हमें आएगी ये गीत हमें सच में उनके होने का एहसास दिलाएगा। मिलिंद पंडिता लेके आए हैं धर्म जी के अभिनीत गीतों को इस मंच पर सुदिले सिंगर प्रोग्राम में, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं एक और सदाबहार अमर गीत जिसे जब भी आप सुनेंगे

0: यार ए हुस्न वाले, जीने दे या मार डाले। आज मौसम बहुत बेईमान है। फिल्म लोफर का ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। रफी साहब ने इसको आवाज दी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था और ऑन स्क्रीन धर्म जी के साथ मुमताज। जी हां, मुमताज ने इस गीत को धर्म जी के साथ गाया था। खूबसूरत गीतों का और धर्म जी की यादों का गीतों के साथ ये सिलसिला यहीं संपन्न होता है। लेकिन हम मिलिंद जी के लिए कहना चाहेंगे, चाहे वो किशोरदा की आवाज हो, चाहे मुकेश साहब की या फिर हेमंत दा की, सभी आवाजों को आपने अपनी एक आवाज में सभी गीतों को पिरोया और इस मंच तक संजो के लाए, उसके लिए शिकागो से हमारे लिए मिलिंद पंडित को हम कहेंगे शुक्रिया, करम मेहरबानी। एक बार फिर जाते हुए इस वर्ष की कसक में ये जख्म हमारे लिए हमेशा आवाज के साथ, गीतों के साथ बना रहेगा। मिलिंद जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपने सुना प्रोग्राम सुरीले सिंगर। और अब हमें अनुमति दें, नमस्कार।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
3: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज, अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
2: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
1: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
2: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
1: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
2: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
2: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
1: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
2: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
1: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
2: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
1: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
2: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
3: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
0: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
0: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो के जगमगाते प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की अगली कड़ी। आज की गायिका की तारीफ करना मुझे बहुत मुश्किल सा लग रहा है। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मासूमियत है और उनके गले में जैसे माँ सरस्वती का निवास है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी झिलमिलाती शख्सियत से जो अपनी चमक भर से हमारे दिलों में खुशियां भर देती है। ऋतु, हमारे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि वो अपना कीमती समय दे रहे हैं मुझे सुन रहे हैं।
5: जी, मैं तो कहूंगी कि ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आप जैसी कलाकार हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है और हमें आपके गाए हुए बहुत से बड़े ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। तो ऋतु, आप का मायका यूपी से है और इस वक्त आप गुड़गांव में रहती हैं। तो दोनों शहरों में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, एक बड़ा शांत सा है, एक कॉरपोरेट हब है, दोनों की चाल ढाल, दोनों के खान पान बहुत फर्क रहता है दोनों में। तो आप किस शहर के ज्यादा करीब अपने आप को मानती हैं और क्यों, और इसके साथ ही हमारे सुनने वालों को कुछ अपने बारे में भी बताइए।
6: जी बिल्कुल, जैसा कि मेरी पैदाइश यूपी में हुई है
5: जी,
6: और तो एक अलग ही लगाव होता है जहाँ भी हम पैदा होते हैं उससे। तो
5: बेशक,
6: तो मैं कहूँगी कि अभी भी यूपी में बहुत अपनापन है। वहाँ लोग जब भी मिलते हैं तो निक लगाव देखने को मिलता है, बहुत मिठास है वहाँ की बोली में, और अभी भी वहाँ का जीवन बहुत सरल है। और गुड़गांव में शादी के बाद जैसे यहाँ पर आ गई हूँ तो ये बहुत ही मॉडर्न एडवांस शहर है, यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है।
5: जी जी,
6: और यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत फास्ट लाइफ है,
5: बहुत फास्ट
6: लेकिन
5: है।
6: जी, लेकिन फिर भी वो टाइम निकालते हैं, मिलते जुलते हैं।
5: जी जी,
6: और जगह जगह
5: अपनी तरफ से कोशिश तो करना ही पड़ती है ना हमेशा।
6: और जैसे ना यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट के जगह जगह के लोग आते हैं
5: जी,
6: और उनके अलग अलग सपने होते हैं, तो ये शहर उनको मौका देता है उन सपनों को पूरा करने का।
5: अरे वाह, बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब
6: जी।
5: तो अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ।
6: जी, मेरा परिवार एक, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, काफी बड़ा परिवार, बाबा दादी ताऊ चाचा मम्मी पापा, मतलब बहुत बड़े परिवार।
5: अच्छा, तो एक ही घर में रहते थे सारे?
6: जी जी, बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत सारे कमरे, सबके अलग अलग कमरे। तो बहुत ही अच्छा बचपन मेरा बीता मैं कहूंगी, और जो मेरे संस्कार हैं वो वहीं से मुझे मिले हैं
5: जी,
6: कि सरल रहो, जमीन से जुड़े रहो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों से प्यार करो, ये सब मुझे वहीं से मिला है
5: जी। एक्चुअली जो हमारे पहले वाली जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही है, वो लोग काफी ज्वाइंट फैमिलीज तब होती थी, और ज्वाइंट फैमिलीज के बहुत से फायदे भी रहे हैं हमेशा ही, है ना। अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होता, आजकल की जिंदगी में बहुत अकेलापन है, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ ही रहा है।
6: जी बिल्कुल
5: जी, जैसे कि आपने कहा कि सपने पूरे करने के लिए हर कोई गुड़गांव की तरफ रुख करता है या भारत के और मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरफ रुख करता है, लेकिन अक्सर वो क्योंकि अपने परिवार को एकदम से ला भी नहीं पाते हैं तो अकेलापन तो रहता ही है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा मतलब मैं देखती हूँ कि स्ट्रेस ही भरा हुई है लाइफ में आजकल की जो भी लाइफ है
5: जी।
6: बट हम जब छोटे थे तो ये सब तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या है,
5: अरे
6: कभी अपने पेरेंट्स में भी नहीं देखा
5: जी, बिल्कुल,
6: कि वो कभी परेशान है, कुछ परेशानी है, सब आपस में मिलके बांट लेते थे, सारे दुख बांट लेते थे। तो बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगी मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है
5: जी। जी नहीं, वो आपके चेहरे से भी झलकता है ऋतु में, तो हालांकि आप एक इंट्रोवर्ट हैं, बट फिर भी आपके जो चेहरे पर जो खिलखिलाती सी हंसती सी मुस्कुराहट रहती है वो बहुत ही आकर्षक है। तो आपके चेहरे से पता चलता है कि आपका जो बचपन रहा है बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रही हैं आप?
6: चार ही लाइन गा दूं तो चलेगा?
5: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम तो आपको लाइव सुनना चाहते हैं, पर वक्त का तकाजा है, हम सारा प्रोग्राम लाइव नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज जरूर सुनाइए
6: जी। बिल्कुल

0: वाह ऋतु, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया। ये गीत बहुत आसान गीत नहीं है, इसमें जो हरकतें हैं, जो मुर्कियां हैं, वो लेनी बहुत मुश्किल है। तो इससे मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी इस गीत को सुनने के बाद, कि क्या आपने संगीत में कोई तालीम ली है?
1: जैसा कि मैंने बताया, मैं जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ एक कल्चर था कि जितनी भी बेटियां हैं ना, वो म्यूजिक सीखें।
0: अरे वाह।
1: पहले मेरी बुआ सीखती थी, तो जब वो बड़ी हुई, शादी हो गई, फिर हम, जैसे मैं, मेरी जनरेशन में 5 बहनें हैं, सारी कजिन्स और रियल सिस्टर मिला के।
0: अच्छा।
1: तो वही गुरुजी आते थे हमें सिखाने।
0: अच्छा।
1: तो 2-2.5 साल की उम्र से हमें बैठा दिया जाता था हारमोनियम, तबले और तानपुरे के साथ, कि ये सीखो गुरुजी के साथ।
0: क्या बात।
1: तो काफी छोटी उम्र से हमने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: गुरुजी के साथ अलंकार लिया, फिर वो राग तान अलाप सब में सिखाते गए और हम सीखते गए। तो मैंने सीखा हुआ है, बट यही है कि जब तक छोटे क्लास में थे तभी तक वो हो पाया। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते गए, वैसे वैसे फिर वो कम होता गया और धीरे धीरे एकदम बंद भी हो गया। लेकिन वो जो सीखा है बचपन का, वो आज भी काम आता है।
0: जी,
1: आज भी वही। जी
0: जी, वो आपके सारे गीतों में झलकता है ऋतु। आपके साथ जब मैं भी गाती हूँ या बाकियों को सुनती हूँ आपके साथ, तो फर्क पता चलता है कि आपको संगीत की समझ है, कहाँ पर क्या करना है। बड़े प्यार से, बड़ी एफर्टलेसली वो आप ले जाती हैं वो हरकत, तो वाकई। हाँ जी, जाहिर होता है। तो संगीत के साथ साथ क्या आपने कोई और भी रुचि रखी है बचपन में?
1: ऐसे मुझे डांस भी बहुत पसंद है, लेकिन कभी सीखा नहीं।
0: अच्छा।
1: और
0: अच्छा।
1: बहुत शाय हूँ, तो ऐसे सबके सामने करती भी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे डांस का भी शौक है और स्टेप में जल्दी सीख भी जाती हूँ देखकर।
0: अच्छा,
1: तो वो
0: अच्छा।
1: भी एक शौक है।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई।
1: और मैं प्राणी हीलर भी हूँ, प्राणी हीलिंग का कोर्स किया है।
0: अरे वाह वाह।
1: तो ये एक डिस्टेंस थेरेपी होती है, इसमें आप दूर बैठे, किसी की भी फोटो बस आपको पता होनी चाहिए
0: जी,
1: आप स्कैन कर सकते हो, हील कर सकते हो,
0: जिसको रेकी भी कहते हैं।
1: नहीं, रेकी अलग है, उसमें आप मतलब छू कर करते हो।
0: अच्छा।
1: दूर से नहीं करते हो।
0: अच्छा।
1: बट इसमें अगर कोई यूएस में भी है और उसकी फोटो मेरे पास है।
0: हाँ।
1: तो मैं उसको भी स्कैन कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, हीलिंग दे सकती हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो वो स्कैनिंग आज भी मेरे काम आती है, हीलिंग तो उतनी काम नहीं आती, मैं उतनी हीलिंग नहीं दे पाती, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। बट मैं किसी को भी स्कैन करके बता सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस
0: अच्छा।
1: तरह से। तो मेरी फ्रेंड्स आती हैं कि देख मुझे थायराइड हो रहा है क्या, देख मुझे शुगर
0: अच्छा।
1: आ रही है क्या।
0: अच्छा।
1: तो मैं वो स्कैन करके देख सकती हूँ, उनको छूने की भी जरूरत नहीं है, वो फोन करके बोलती जरा मेरी स्कैनिंग कर दे।
0: मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर ऋतु कि हमारे श्रोता आज के प्रोग्राम के बाद ना सिर्फ आपकी गायकी की तारीफ करने वाले हैं, बल्कि हमें बहुत सारे फोन आने वाले हैं कि जी ऋतु जी को हमारी पिक्चर भेज दीजिए, हम भी स्कैन करवा के पूछना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं हमें। तो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी की मल्लिका हैं आप। इसी के साथ आपका दूसरा गीत लेते हैं।

0: ऋतु, वैसे आप गृहिणी हैं, बड़ी ही कुशल गृहिणी हैं और आपको मेहमान नवाजी का भी बहुत शौक है, आप कुकिंग में भी बहुत ज्यादा आप शौक रखती हैं। मैंने तो आपके हाथ का बना हुआ खाना बड़े ही स्वाद के साथ चखा भी हुआ है। तो कहते हैं कि जो गृहिणी होती है वो परिवार की रीढ़ होती है, उसकी मेहनत, समर्पण, त्याग, यही घर का हर कोना खुशियों से भर देता है। तो आप अपने परिवार की रीढ़ है बेशक, तो आप किस इंसान को अपनी रीढ़ मानती हैं? किस इंसान को आप किस इंसान के बारे में आप ये कह सकती हैं कि वो आपका मनोबल बांधे रहता है, हमेशा सपोर्ट करता है? किसको श्रेय देती हैं अपनी ये सारी पॉजिटिविटी का, जहां पर आप जिंदगी में जिस मुकाम पर आई हैं वहां तक आने का?
1: जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर, गुरुजी, माता पिता को ही धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे सबसे पहले जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो उनका ही हुआ है।
0: जी जी।
1: और उसके बाद मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड अनुराग का बहुत सपोर्ट है मुझे, हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं।
0: बेशक,
1: बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और हमेशा इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं कहूंगी कि वो ही मेरी रीढ़ है, मुझे आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। और मैं चाहूंगी कि जो आपका अगला गीत है वो आप अनुराग जी को ही डेडिकेट करके हमें सुनवा दीजिए।
1: जी बिल्कुल।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत रहा ऋतु, मजा आ गया सुनकर। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ दो शब्द कह के जाइए।
1: सबसे पहले आपको फिर से धन्यवाद।

0: कभी कहीं ना कहीं अपने आप को संगीत से जोड़े रखा है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: जी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को महत्व दें। हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को तो महत्व देते ही हैं, कहीं ना कहीं हम
1: बिल्कुल
0: अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपनी, हाँ, अपनी खुशियों का, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे
1: जी
0: पहले जो कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखना है,
1: बिल्कुल
0: उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, और खुद से सबसे पहले प्यार करना चाहिए।
1: जी
0: जी,
1: बिल्कुल जी
0: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की सितारा ऋतु वर्मा गुड़गांव से। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। तब तक डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: मैं आवाज हूँ तो तू ही गीत मेरा। इस प्रोग्राम का सबसे ताजा तरीन एपिसोड लेके हम हाजिर हैं और हमारे संग है, हमारे साथ हैं अर्चुरानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल और मेल सिंगर अनुराग। आप दोनों का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस खास आयोजन में। आवाज, गीत और संगीत, इन तीनों से हो जाए जब प्यार, या यूं कहें कि इन तीनों का जब हो जाए मेल, तो उसको क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे सच में योग। क्योंकि हम गाते हैं तो हमारी धड़कनें, हमारी सांसें जो संगीत के साथ चलती है, रुकती है, ठहरती है, और जो व्यायाम करती है, वो सच में योग ही तो है। आपने सोचा कभी इस तरफ? तभी तो संगीत को एक तरह की थेरेपी कहा जाता है। योग दिवस है, संगीत का दिन है, और ये सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं जो या तो पिता होते हैं या पिता तुल्य होते हैं। तो आज एक साथ इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए अर्चुरानू 16 क्या कह रही हैं अपने पहले इस सुरीले सॉन्ग में, आइए सुनते हैं। सिंग फॉर पीस साथ दे रहे हैं अर्चुरानू का।

तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। और हम ये कहते हैं योग दिवस पर कि तुम जो योग करोगे संगीत का, तो सच में सांस को रोक लोगे, और सांस को रोक लोगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। इसलिए गीत बहुत जरूरी है, संगीत बहुत जरूरी है। ये ऐसी दवा है जिसे खाना नहीं पड़ता, गाना पड़ता है। और आप गा सकते हैं तो इस मंच पर आ सकते हैं। अचुरानो और सिंग फॉर पीस की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला नगमा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आवाज की बात, गीत की बात, संगीत की बात। और मिल जाएं इस तरह जैसे दो लहरें हो उस तरह, लेकिन मिलना, और मिलने का नाम ही तो योग है, और वो आसान नहीं है। उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और गीत के माध्यम से मेहनत कर रही हैं हमारी जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानो 16। और अगले गीत में कह रहे हैं मनोज जोली अर्चुरानो के संग मंजिलें, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। आइए सुनते हैं।

चुरानों का साथ दे रहे थे मनोज जौली। और अब इस मंच पर आ गए हैं अचुरानू 16 का साथ देने इस गीत में राम जायसवाल। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।

इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप योग करेंगे तो फिट रहेंगे, जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे, फिट रहेंगे तो गीत गाएंगे और गीत हम तक पहुंचाएंगे, गीत सुनाएंगे। आपको शुभकामनाएं गीतों के लिए, आज के दिन के लिए। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और अब अर्चुरानू के संग बबलू आर्या।

बबलू आर्य और अचुरानु 16 की आवाजों में आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, पर तेरे बगैर

और गीत भी गाना है और गुरु मंत्र को दोहराना है तो सच में जरूरी है, बहुत जरूरी है योग करना। आज का ये प्रोग्राम योग दिवस को समर्पित था और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर जिसे आप अनुराग के नाम से जानते हैं। गीतों के प्रति अनुराग, उनका प्यार देखते देखते इतना बढ़ गया है कि अनुराग से सच में उनको राग कहने का मन करता है। जो गाने का अंदाज आया है, जो गाने की अदाई है, उसको हमारी तरह आपने भी महसूस किया होगा। आइए सुनते हैं अनुराग का इस प्रोग्राम का पहला गीत है।

चांदनी रात है तू मेरे साथ है और गीतों की बात है और आज हम गीत सुना रहे हैं आपको जयपुर रेडियो के प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर अनुराग सेना की आवाज में।

सपना वो हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है और ये दुआ कर रहे हैं इस मंच पर अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर गीत लेके आते हैं अनुराग और अर्चुरानो 16। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड का ये सुरीला मंच हमारे श्रोताओं के लिए। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कहने जा रहे हैं अनुराग।

ये रोग ला इलाज है, फिर भी कुछ कराओ। और हम तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ योग करने की जरूरत है, योग से सारे इलाज हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इस मंच पर आवाज है जिसे आप सुन रहे हैं, अनुराग सिन्हा की। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुने अगली गजल, आवाज अनुराग की।

बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। अनुराग गा रहे थे ये सुरीली गजल, कैसी लगी आपको अनुराग की आवाज, आपकी आवाज आपकी पहचान। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। और ये गम का गीत नहीं है और ना ही छुपाने वाली बात है, क्योंकि हम इस मंच पर आपके साथ हैं जिस का नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के हमारे द्वे मेहमान अर्चुरान 16 और अनुराग का हम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और कहते हैं सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। हमें अनुमति दें इस प्रोग्राम से, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सबके लिए और आज के लिए ये गीत।